FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी

0: ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

समूह स्वर में आपने सुनी देश वंदना। आइए सुनते हैं कबीर भजन राजेश डेविड की आवाज में।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको भजन ओम व्यास और साथियों की आवाजों में।

0: और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है कद्दूवर्गीय सब्जियों में रोग नियंत्रण। वाचक अभिनव गौरहा है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। कल हम बात करें कद्दू वर्गीय साग सब्जी में कीट मन के नियंत्रण कौन ढंग से करे जाए। आज आप मन बताबो कद्दू वर्गीय सब्जी के प्रमुख व्याधि। सबले पहली उकटा रोग हम जानथन, फ्यूजेरियम उकटा। ये रोग एक मृदा जनित फफूंद फ्यूजेरियम स्पीसीज से होते। एखर से प्रभावित पौधा मुरझा के सूख जाते। पौधा के जड़ी और अंदर के भाग भुरवा हो जाते। पौधा की वृद्धि रुक जाते। स्पष्ट लक्षण हमन ला फूल आए और फल बने के अवस्था में दिखाई देते। तो एखर बर सबले पहली तो हमन ला बीज के किस्म की बात करी तो रोग रोधी किस्म होते उकटा से रोग रोधी किस्म ओखर बुआई करना है। भूया ला सौरीकरण करे से बीमारी कम लगते। बुआई से पहली बीज ला बाविस्टिन 1 से 2 ग्राम की दर से उपचारित करना है और बीमारी आए के बाद ड्रेंचिंग घलो कर सकत हन। दूसरा बीमारी के बात करी श्याम वर्ण जिला अंग्रेजी में एंथ्रेक्नोज कहे जाते। ये रोग एक प्रकार के फफूंद से होते। ये रोग तरबूजा कद्दू में ज़्यादा होते जबकि रखिया में ये रोग और ज़्यादा होते। ये रोग ह गर्म और आर्द्र मौसम में ज़्यादा फैलते। पौधा के कोनो भी वृद्धि अवस्था में आ सकते। पुराना पत्ती मन में छोटे पीला धब्बा बनते। ये धब्बा कोड़ी या गोलाकार हो सकते। बाद में ये मन आपस में मिल जाते और सूख जाते। पत्ती के ये सूखा भाग झर जाते। खीरा खरबूजा लौकी के पत्ती में कोड़ी या खुरदुरा गोल धब्बा दिखाई देते जौन पत्ती ला पूरा तरह से झुलसा देते। तेखर रोकथाम बर हमन ला शुरू में करना है बीज ला थायरम या बावेस्टीम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके ही बोना है। मैंको जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से 7 दिन के अंतर में 2 पैच छिड़काव करना है। अगला रोग की बात करी चूर्णिल आसिता। ये रोग में पत्ती की ऊपरी सतह में सफेद या धुंधला धूसर रंग के छोट छोट धब्बा बनते जौन बाद में पूरा पत्ती में फैल जाते। पत्ती और फल के आकार छोटे और विकृत हो जाते।

0: रोकथाम बर रोग ग्रसित पौधा ला ओकर अवशेष ला नष्ट कर देना है। रोग के प्रारंभिक अवस्था में कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव हमन ला करना है। अगला रोग की बात करी पत्ती झुलसा। सबले पहली पत्ती में हल्का भूरवा रंग के धब्बा दिखाई देते जो बाद में गहरा रंग के बड़े आकार में हो जाते। पत्ती में धब्बा केंद्रीकृत गोलाकार में बनते बीच में बनते जेखर से पत्ती ह झुलसे हुए दिखाई देते। फिर एकर रोकथाम बर हमन ला स्वस्थ बीज के उपयोग करना है। जौन फसल में ये रोग आ गए है ओखर बीज के उपयोग नहीं करना है। फसल चक्र ला अपनाना है। फसल चक्र अपनाए के मतलब बार बार एक ही प्रकार के फसल ला नहीं लगाना है चाहे कोनो भी फसल हो। फसल में इंडोफिल M45 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव हमन ला करना है। मोजेक रोग के बात करी ला कहे जाते कुकुम्बर मोजेक। कुकुम्बर मतलब कोहड़ा। पौधा छोटे रह जाते और ग्रसित पौधा में नया जिन पत्ती होते वो छोटे आकार के और पीला रंग के धब्बा दिखाई देते। पत्ती मन सिकुड़ के मुड़ जाते और पीला रंग के मोजे क्रम दिखाई देते। कुछ फूल के गुच्छा में घलो दिखाई देते। फल छोटे हो जाते विकृत हो जाते या फल बिल्कुल नहीं आवा है। इमिडाक्लोप्रिड 3 से 5 ml 15 लीटर पानी दवाई ला 1 हफ्ता के अंतराल में खड़े फसल में 2 पैच छिड़काव करना है जेकर से वाहक जिन होते वो हन नष्ट हो जाते। तो किसान भाई हो ए रही से कद्दू वर्गीय सब्जी के प्रमुख व्याधि प्रमुख रोग अवखर रोकथाम। आखिर में ही कहबो के कोनो भी जब हमन फसल के बुआई करत हन तब बीज सबले महत्वपूर्ण होते। बीज ला हमन ला चाहे जैविक तरीका से चाहे कोनो भी केमिकल से ओला उपचारित करके ही हमन ला बोना चाहिए। समय समय में खेत ला बढ़िया ढंग से तैयार करी गर्मी के समय में गहरा जुताई करे से हमन ला ए सब में लाभ मिलते। राम राम जय जोहार।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग नियंत्रण इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। वाचक थे अभिनव गौरहा। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका है कविता कृष्णमूर्ति। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। नवविहान में आज हम चर्चा करेंगे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन पर। श्रोताओं, किसी शहर की पहचान केवल उसकी चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और चमकती रोशनी से नहीं होती। एक अच्छा शहर वह है जहां हर घर तक साफ पानी पहुंचे, गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो, तालाब और जल स्रोत सुरक्षित रहें, पार्क और हरित क्षेत्र विकसित हों और लोगों को स्वस्थ और सुविधाजनक वातावरण मिले। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने शुरू किया था अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे संक्षेप में अमृत यानी अमृत मिशन कहा जाता है। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना था। बाद में इसका विस्तार करते हुए अमृत 2.0 शुरू किया गया, जिसका विशेष जोर देश के शहरों को जल सुरक्षित, आत्मनिर्भर और पर्यावरण के लिहाज से अधिक टिकाऊ बनाने पर है। अब सवाल है कि आखिर इस मिशन के तहत क्या कार्य हो रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है पानी। अमृत 2.0 के तहत शहरों में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। नई पाइपलाइन बिछाना, पुरानी पाइपलाइन को बदलना, जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना, पानी के भंडारण की

व्यवस्था करना और घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना, इन सभी कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। यानी आने वाले समय में शहरों के लाखों परिवारों के लिए लक्ष्य केवल पानी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि साफ और सुरक्षित पानी को घर के नल तक पहुंचाना है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सीवरेज और गंदे पानी का प्रबंधन। श्रोताओं, शहरों में आबादी बढ़ने के साथ गंदे पानी की समस्या भी बढ़ती है। अगर सीवरेज की उचित व्यवस्था ना हो तो गंदा पानी नालियों, नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर सकता है और इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। अमृत 2.0 के तहत सीवर नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी और सेप्टेज मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं को विकसित और मजबूत किया जा रहा है। कोशिश ये है कि इस्तेमाल किए गए पानी को उपचारित करके दोबारा उपयोग में लाया जाए, यानी गंदा पानी समस्या नहीं बल्कि उपचार के बाद एक संसाधन बन सके। तीसरा महत्वपूर्ण काम है तालाबों, झीलों और दूसरे जल स्रोतों का कायाकल्प। हमारे शहरों में भी कभी बहुत तालाब और छोटे बड़े जल स्रोत हुआ करते थे। समय के साथ कई जल स्रोत गंदगी, अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण अपना स्वरूप खो बैठे हैं। इस मिशन के माध्यम से ऐसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन और संरक्षण पर काम किया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों में तालाबों और झीलों के पुनर्निकास की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। उदाहरण के लिए आधिकारिक परियोजना पोर्टल पर हम इनके कार्य देख सकते हैं। श्रोताओं, जल स्रोत बचेंगे तो भूजल को सहारा मिलेगा, वर्षा जल को संचित करने में मदद मिलेगी और शहरों में पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकेगी। इसके साथ ही पार्क और हरित क्षेत्रों का विकास भी इस मिशन का हिस्सा है। शहरों में बढ़ते कंक्रीट के बीच पेड़ पौधे, पार्क और खुले स्थान सिर्फ सुंदरता के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए भी आवश्यक है। इसलिए अमृत 2.0 के तहत कई शहरों में पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित किए जा रहे हैं। कुछ परियोजनाओं में जल स्रोतों के साथ आसपास के हरे क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। अभी हम नवविहान में चर्चा कर रहे थे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

प्रतिदिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। यादों के झरोखे से कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। कलाकार होंगे गुलाबा देवी खरे और साथी कौशल्या बघेल और साथी। सुबह 9 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारे लाल गुप्त की 136वीं जयंती पर वार्ता। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे बाबू प्यारे लाल गुप्त, श्रीजन पीठ बिलासपुर रतनपुर। सुबह 10 हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, प्रस्तुत करता होंगी श्वेता पांडे। सुबह 10:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:05 पर। युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे संध्या 5:35 पर। आज की बात में चर्चा का विषय होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। क्रम होगा पर्यावरण हितैषी हमारे कार्य का। शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे शाम 7:30 पर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा वर्षा के बाद मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती, पौध उत्पादन वितरण एवं पौध रोपण की जानकारी विषय पर श्रीमती निशा चंदेल से ली गई भेंट वार्ता सुनिएगा। रात्रि 8 बजे सपना अवस्थी के गीतों को हम पेश करेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक कटे रहते हैं। ऐसे में वहां समय पर जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से निवासियों को 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले डिजिटल रूप से अपनी जानकारी देने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय का परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करते हुए ये बात कही। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

0: राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बाय मिलने के बाद पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। MR अर्जुन और हरिहरन अमसारुक्कुन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

आज सुबह कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, हाल ही में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है और आज़ादी का ये पर्व हमें हर साल ये याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे जीवन में आए उन बदलावों का नाम भी है जिन्होंने हमें अपनी पसंद से जीने, सोचने और अपने फैसले लेने का अधिकार दिया। समय के साथ हमारा रहन सहन बदला, पहनावा बदला, हमारी सोच बदली और जीवन शैली का दायरा भी बदला। आज हम घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी पसंद की जगहों पर जाते हैं, दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताते हैं और बाहर खाना भी हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया है। कभी बाहर खाना किसी खास मौके की बात हुआ करता था, लेकिन आज होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में खाना कई लोगों के लिए एक शौक भी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा भी। लेकिन हमारे मन में कई बार ये सवाल उठता होगा कि जिस खाने के लिए हम अपनी मेहनत की कमाई

माई से पैसे दे रहे हैं, क्या वो खाना वास्तव में साफ सुथरा और हमारी सेहत के लिए सुरक्षित है? जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ का माहौल देखते हैं। साफ सुथरी टेबल, व्यवस्थित जगह और अच्छा वातावरण देखकर हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि टेबल तो साफ दिखाई देता है मगर आसपास गंदगी होती है। खाने की चीजें ठीक तरह से ढकी नहीं होती, किचन की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, पीने के पानी और टेबल पर मक्खियां बैठी रहती हैं, कहीं कहीं खाना लंबे समय तक रखा हुआ दिखाई देता है, बासी भोजन परोसे जाने की आशंका होती है, या ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनसे हमारा मन ही खाने से हट जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे भोजन से सिर्फ हमारा मन खराब नहीं होता, हमारी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमें खुलकर होटल के मालिक या उनके कर्मचारियों से खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई पर चर्चा करना जरूरी होता है। अपनी बात को खुलकर किसी के सामने रखना झगड़ा करना नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक जागरूक ग्राहक के रूप में अपनी चिंता और विचार सामने रखना है। हमारा पैसा सिर्फ खाने की कीमत नहीं चुका रहा होता, बल्कि हम ये उम्मीद भी कर रहे होते हैं कि जो भोजन हमें मिल रहा है वो खाने योग्य है और सुरक्षित भी। वैसे भी बरसात के मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और खराब चीज़ें खाने से हमें उल्टी दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर का ताज़ा, सुपाच्य और स्वच्छ भोजन ही खाएं, और अगर घर के बाहर कुछ खा रहे हों तो उसकी गुणवत्ता का ध्यान ज़रूर रखें। श्रोताओं, आजकल का ज़माना शॉर्टकट का हो गया है। हम थोड़ी सी मेहनत बचाने के चक्कर में जब भूख लगती है तो पैक्ड फूड खा लेते हैं, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो, बिस्किट हो या इंस्टेंट फूड हो। हम अक्सर पैकेट उठाते हैं, कीमत देखते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर खरीदते वक्त उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं देखते, ना ही उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री को देखते हैं। अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है या आप किसी सामग्री से बचना चाहते हैं तो ऐसे में पैक्ड फूड खरीदते वक्त लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पैकेट पर भी दी गई न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं, जैसे उसमें कितनी ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, सोडियम आदि हैं। और अगर आप शाकाहारी या मांसाहारी भोजन को लेकर विशेष सावधानी रखते हों तो पैकेज पर दिए गए हरे रंग यानी शाकाहारी और लाल रंग यानी मांसाहारी चिन्हों को भी ज़रूर देखिए। श्रोताओं, आजकल बाजार में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए तरह तरह के पैक्ड फूड और फ्लेवर ड्रिंक्स आसानी से उपलब्ध हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चेरी, एप्पल, ग्रीन एप्पल, पाइनएप्पल जैसी कई आकर्षक फ्लेवर देखकर बच्चे तो खास तौर पर इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को हम स्वादिष्ट समझकर बच्चों को दे रहे हैं उसमें वास्तव में कितनी चीनी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितने एडिटिव मौजूद हैं? इसलिए अगली बार जब आप कोई पैक्ड फूड, फ्लेवर ड्रिंक या बच्चों के लिए कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो सिर्फ उसके स्वाद और विज्ञापन पर भरोसा ना करें, कुछ पल निकालकर उसका फूड लेबल ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले देखिए कि उसमें कितनी मात्रा में शुगर है। कई बार किसी पेय या खाद्य पदार्थ का स्वाद बहुत मीठा होता है लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उसमें कुल कितनी शुगर मौजूद है। बच्चों को लगातार बहुत अधिक मीठे खाद्य पदार्थ और पेय देने की आदत उनकी रोज़मर्रा की डाइट को असंतुलित कर सकती है। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर नज़र डालें, उसमें इस्तेमाल किए गए फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे एडिटिव्स की जानकारी दी गई होती है। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंग्रेडिएंट सिर्फ इसलिए स्वस्थ नहीं हो जाता क्योंकि पैकेट पर उसका स्वाद फल जैसा लिखा हुआ है। श्रोताओं, पैकेट सिर्फ खोलने या खाने के लिए नहीं होते बल्कि उसे पढ़कर समझने के लिए भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप खाएंगे वो सीधे आपके शरीर और मन पर असर करेगा।
हम आज़ाद हैं अपनी पसंद का खाना चुनने के लिए।

लेकिन इस आज़ादी के साथ जागरूकता और जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप बाहर खाने जाएं, तो स्वाद के साथ स्वच्छता और पोषण भी ज़रूर ध्यान रखें।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथी स्वीकार करें नमस्कार उमाशंकर पांडे का। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव जी की आराधना का सावन माह का आज तीसरा सोमवार है। शुभकामनाएं। बड़े सुबह से ही सभी शिवालयों में पूजा अर्चना तथा भक्ति भाव का माहौल है। सभी मंदिरों में शिव भक्तों का बड़ी संख्या में आना जाना दिखाई दे रहा है। मंदिरों के पास बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, यहाँ पूरी सावधानी के साथ चलें, कम से कम गति में चलें। साथियों, इसी संदर्भ में आज ही जिले में 150 से 2000 स्त्री पुरुषों का कांवड़ यात्री का दल लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर जल अभिषेक करेंगे। ये सभी कांवड़ यात्री आज प्रातः 8 बजे ग्राम सागर थाना हिरी के सागर मैया तालाब से जल लेकर यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो ग्राम कुरेली, खजरी, उड़ेला, बुटेना, मुरु, छोटे मेढ़ पार होते हुए ग्राम धौरभाटा बिल्हा स्थित भूलकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। यद्यपि इस आयोजन में पुलिस व्यवस्था होगी, फिर भी सभी कांवड़ यात्री एवं इसके आयोजकों से यही कहना है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी कांवड़ यात्री सड़क के किनारे एक भाग में ही चलें, पूरी सड़क में बिखर कर ना चलें, ताकि आम आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहे। कांवड़ यात्री अपना कांवड़ कंधे पर इस प्रकार रखें जिससे कांवड़ का एक सिरा आपके सामने और दूसरा आपके पीछे हो, न कि अगल बगल। इस मार्ग में चल रहे सभी वाहन चालक विशेष सावधानी से चले, धीरे चलें। मित्रों, आज अखिल भारतीय मजदूर संघ के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दोपहर 1 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में धरना प्रदर्शन एवं इसके बाद यहां से रैली स्वरूप चलकर कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक से नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने का आह्वान किया गया है। धरना प्रदर्शन एवं रैली के सदस्य ये भली भांति जानते हैं कि आपका प्रस्तावित मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, इसलिए यह तय करें कि रैली के कारण शासकीय कार्य या आम यातायात किसी भी कीमत में बाधित न हो। अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन भी 1 सेकंड के लिए न रुकने पाए। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, नागपंचमी हमारे देश की उन सुंदर परंपराओं में से एक है जिसमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देता है। इस पावन अवसर पर हम सभी श्रोताओं को नागपंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, नागपंचमी हमें सिर्फ पूजा पाठ का संदेश नहीं देती, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। सांप हमारे पारिस्थितिक

0: के तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहों और छोटे जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए हर सांप को देखते ही डरकर उसे मार देना सही नहीं है। अधिकांश सांप इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं और हर सांप जहरीले भी नहीं होते। नागपंचमी पर हमें विशेष रूप से ये संकल्प लेना चाहिए कि सांप को दूध पिलाने और उसके साथ किसी तरह का जोखिम लेने के बजाय उसके प्राकृतिक जीवन और सुरक्षा का सम्मान करें। सांप मिलने पर उसे पकड़ने या छेड़ने की कोशिश ना करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित वन विभाग या स्थानीय रेस्क्यू टीम की सहायता लें। और एक जरूरी बात, अगर कभी सांप काट ले तो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र या घरेलू नुस्खों में समय बर्बाद ना करें श्रोताओं। व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना ही सबसे जरूरी कदम है। तो आइए इस नागपंचमी पर हमारी आस्था के साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ जाए। नागों की पूजा करें लेकिन उन्हें परेशान ना करें। प्रकृति का सम्मान करें और वन्य जीवों की रक्षा करें।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: हिंदी साहित्य की दुनिया में कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो केवल कहानियाँ और उपन्यास नहीं लिखते, बल्कि अपने समय के समाज, उनकी संस्कृति, संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं को शब्दों में जीवंत कर देते हैं। अमृतलाल नागर ऐसे ही महान साहित्यकार थे। उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करना हिंदी साहित्य की उस समृद्ध परंपरा को याद करना है जिसमें आम आदमी का जीवन, लोक भाषा, इतिहास और संस्कृति एक साथ दिखाई देती है। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा में हुआ था। बाद में लखनऊ उनकी कर्मभूमि बना और यही शहर उनकी रचनात्मक चेतना का महत्वपूर्ण आधार भी बना। उन्होंने साहित्य की लगभग हर प्रमुख विधा में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, व्यंग और बाल साहित्य, सभी क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी जीवन को बहुत करीब से देखना। वो समाज के ऊंचे नीचे हर वर्ग के लोगों के बीच जाते, उनकी भाषाएं सुनते, उनके सुख दुख को समझते और फिर उसे अपनी रचनाओं में जगह देते थे। यही कारण है कि उनके पात्र कागज पर बने हुए काल्पनिक चरित्र नहीं लगते, बल्कि हमारे आसपास चलते फिरते दिखाई देते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में बूंद और समुद्र, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन और गदर के फूल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बूंद और समुद्र में उन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंधों को गहराई से देखा। वहीं मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और युग को साहित्यिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। श्रोताओं, इनका इतिहास देखने का नजरिया भी बहुत खास था। वो इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं मानते थे। उनके लिए इतिहास के पीछे छिपे आम लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी संवेदनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। गदर के फूल जैसी कृति में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोक स्मृति और जनजीवन को उन्होंने साहित्यिक रूप दिया। उनकी भाषा उनकी पहचान।

थी। उनकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, उर्दू और लोक भाषाओं की सहज उपस्थिति दिखाई देती है। उन्होंने ये साबित किया कि साहित्य की भाषा केवल किताबी और कठिन नहीं होनी चाहिए, वो भाषा जनता के बीच भी आ सकती है। अमृतलाल नागर केवल गंभीर साहित्यकार नहीं थे श्रोताओं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में हास्य, विनोद, सहजता और मिलनसारिता भी थी। वो लोगों से जुड़ने वाले लेखक थे। उनके व्यक्तित्व में विद्वता के साथ जमीन से जुड़े रहने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि उनके साहित्य में जीवन की वास्तविक खुशबू महसूस होती है। उनके साहित्यिक योगदान को देश ने भी सम्मान दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया। लेकिन किसी भी बड़े लेखक की तरह अमृतलाल नागर की सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं, बल्कि उनका वो साहित्य है जो आज भी पाठकों को, समाज और मनुष्य को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। अमृतलाल नागर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि समाज की आवाज, लोक जीवन की धड़कन और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज दिया। उनकी लेखनी हमें ये सिखाती है कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपने समय और समाज को समझना भी है। श्रोताओं, कार्यक्रम से हम अब विदा ले रहे हैं, इसी वादे के साथ कि फिर जुड़ेंगे आप सभी से नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आनंद लीजिए यादों के झरोखे से कार्यक्रम का।

आपने सुना सुजाता फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एसडी वर्मन का संगीत था। आइए सुनते हैं शैलेंद्र की रचना को सलील चौधरी की धुन पर। लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है परख।

लीजिए, पेश है बरसात की रात फिल्म का ये तराना, रोशन की तर्ज पर। साहिर लुधियानवी के बोलों को स्वर दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: राजा मेहंदी अली खान की रचना को हम पेश कर रहे हैं मदन मोहन की धुन पर। गायकी लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है मेरा साया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं शैलेंद्र के बोलों को शंकर जयकिशन की तर्ज पर। आवाजें लता मंगेशकर आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है मयूर पंख।

0: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज सुबह 9 बजे प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारे लाल गुप्त की 136वीं जयंती पर वार्ता हम पेश करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बाबू प्यारे लाल गुप्त, सृजन पीठ बिलासपुर रतनपुर। ये सूचना यहीं समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं बहाना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण है और संगीतकार मदन मोहन है।

0: बहाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखे से यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह

0: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न

0: पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 01123310481 या 23717117 या 23717106 और 23314444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया।

अभी आपने सुना गुलाबा देवी खरे और साथियों की आवाज़ों में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए अगला लोकगीत हम पेश कर रहे हैं कौशल्या बघेल और साथियों की आवाज़ों में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम अमराई का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं गुलाबा देवी खरे और साथियों की आवाजों में सुवा गीत।

0: कौशल्या बघेल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीत कार्यक्रम अमराई। इसी के साथ यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारे लाल गुप्त की 136वीं जयंती पर वार्ता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बाबू प्यारेलाल गुप्त, सृजन पीठ बिलासपुर रतनपुर।
1: साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त की 136वीं जयंती पर विशेष प्रायोजित कार्यक्रम रतनपुर के रतन, बिलासपुर के लाल, रायपुर के प्यारे बाबू प्यारेलाल। प्रायोजक हैं बाबू प्यारेलाल गुप्त सृजन पीठ बिलासपुर रतनपुर। छत्तीसगढ़ अंचल का बिलासपुर जिला किसी भी दृष्टि से पिछड़ा नहीं है। प्राचीन काल में रतनपुर इसकी राजधानी थी। वहाँ के खंडहर उसके वैभव का स्मरण आज भी कराते हैं। रतनपुर का उल्लेख पुराणों तथा शास्त्रों में भी होता है। रतनपुर राजधानी थी, अतः वहाँ पंडितों, विद्वानों और कवियों का निवास करना स्वाभाविक ही था।
2: इसी रतनपुर नगरी में सन 1891 में जन्म हुआ बाबू प्यारेलाल गुप्त जी का। इनके पिता का नाम श्री कुशल प्रसाद जी था और ये शिक्षक थे, जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सहयोगी, इतिहासकार और कवि थे। इसके साथ साथ ब्रज भाषा में उन्होंने एक काव्य ग्रंथ राधा कृष्ण विहार की रचना भी की थी, जो सभी के बीच काफी लोकप्रिय है।
1: प्यारेलाल जी को साहित्यिक रुचि उनके पूज्य पिताजी से विरासत में मिली। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वे बिलासपुर आए, मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिलासपुर में बस जाने के पश्चात वे राय बहादुर जगन्नाथ प्रसाद भानु के संपर्क में आए और उनके साहित्य का पालन पोषण उन्हीं के संरक्षण में हुआ।
2: यह सुयोग ही कहा जाएगा कि बिलासपुर में भानु जी के प्रयत्नों से ही बिलासपुर जिला सहकारी बैंक की स्थापना होते ही प्यारेलाल जी को व्यवस्थापक का पद मिला और वो वहां नियुक्त हो गए, जहां वे 32 वर्षों तक कार्यरत रहे। बिलासपुर में सहकारी गृह निर्माण समिति की स्थापना हुई और वहां पर प्यारेलाल जी ही उसके प्रथम प्रबंधक भी बने।
1: भानु जी से संपर्क में आने के साथ ही उन्हें सैयद मीर अली मीर, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी एवं लोचन प्रसाद पांडे जी के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्ययनशील होने के फलस्वरूप उन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया एवं शीघ्र ही हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं पर उन्हें समान अधिकार प्राप्त हुआ।
2: गुप्त जी की प्रथम पुस्तक सुखी कुटुम्ब, यह एक उपन्यास था जिसे उन्होंने मराठी से अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था। यह सुंदर आदर्शवादी उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके 4 या 5 संस्करण प्रकाशित हुए। गुप्त जी का तीसरा मराठी उपन्यास सरस्वती भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा, जिसे ग्वालियर की हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली ने प्रकाशित कराया था। गुप्त जी की अगली कृति फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास और ग्रीस का इतिहास रहा। इन पुस्तकों का प्रकाशन तरुण भारत ग्रंथावली माला प्रयाग और ग्वालियर के ग्रंथ प्रसारक मंडली ने प्रकाशित करवाया था। यहाँ ये बात बताने योग्य है श्रोताओं कि दोनों इतिहास की पुस्तकें लगभग 20-25 वर्षों तक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित विशारद परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में थी और उनकी अगली कृति लवंग लता एक सामाजिक उपन्यास रही, जिसे कलकत्ते की बहुत ही प्रसिद्ध हरिदास कंपनी ने प्रकाशित कराया था। इसका कथ्य बहुत ही मनोरंजक और हृदयग्राही है। ये कृति बताती है कि किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का गलत मतलब लगाकर लोग लाभ के बदले हानि ही उठाते हैं।
1: गुप्त जी की पहली कहानी लाल बैरागिन थी। इन दिनों कहानी को गल्प कहा जाता था। इनमें से कुछ कहानियां

0: काशी से प्रकाशित इंदु पत्रिका में शामिल हुई और कुछ हिंदी गल्प माला में प्रकाशित हुई। गौरव की बात यह है, उन्हें गल्प के लिए रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया था। पुष्पहार गुप्त जी की इन्हीं कहानियों का एक संग्रह है।
1: उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राम बहादुर हीरालाल के अनुरोध पर बिलासपुर वैभव नामक पुस्तक लिखी। इसे हम बिलासपुर जिले का गजेटियर कह सकते हैं। इस अवधि में स्वर्गीय लोचन प्रसाद पांडे की मित्रता ने गुप्त जी के साहित्यिक जीवन की तो धारा ही बदल दी, जिससे वे इतिहास और पुरातत्व की ओर और अधिक आकर्षित हो गए। इसी दरमियान वे महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी के सह सचिव चुन लिए गए। बाद में गुप्त जी वहां के प्रधान सचिव हो गए। इस प्रकार इस समिति को अपनी सेवाएं अर्पित कर वे छत्तीसगढ़ के गौरव में निरंतर वृद्धि करते रहे।
0: सहकारी क्षेत्रों में सेवा से प्राप्त अनुभव पर रतिराम का भाग्य सुधार नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की। छत्तीसगढ़ सहकारी संघ ने हिसाब किताब रखने की विधि बनाने के लिए गुप्त जी से एक पुस्तक लिखवाई थी, सहकारी सभा हिसाब किताब शिक्षक, जो लाभकारी प्रमाणित हुई।
1: संवत 2000 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर में विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ। उसकी स्मृति में गुप्त जी ने श्री विष्णु महायज्ञ स्मारक ग्रंथ लिखा, जिसकी समीक्षा करते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अभूतपूर्व ग्रंथ कहा। प्यारेलाल गुप्त जी ने स्वर्गीय पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी की जीवनी पर आधारित एक किताब लिखी। उस पुस्तक का नाम था स्वर्गीय पंडित लोचन प्रसाद पांडे। इस किताब ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाए। उनकी अन्य कृतियों में नाटक एक दिन और एकांकी 2 सौत भी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखा जो प्राचीन छत्तीसगढ़ के नाम से आज रविशंकर विश्वविद्यालय का संदर्भ ग्रंथ भी है। एक अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ जो उन्होंने लिखा उसका नाम था प्राचीन छत्तीसगढ़। इसे रविशंकर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित कराया और ये आज विश्वविद्यालय का इतिहास का संदर्भ ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ को लिखने के लिए उन्होंने 7 साल तक सामग्री जोड़ी। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय तक गुप्त जी 70 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी लेखनी अविरल थी।
0: गुप्त जी की रचनाओं पर द्विवेदी युगीन छाप है। मूलतः वे हिंदी के लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन के उत्तर काल में हिंदी और छत्तीसगढ़ी में काव्य रचना प्रारंभ की और छत्तीसगढ़ी काव्य को हिंदी काव्य के समकक्ष लाने का प्रयास किया। एक बार उर्दू के विख्यात प्रगतिवादी कवि सईद जाफरी बिलासपुर आए। उस समय स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा के आग्रह पर गुप्त जी ने अपनी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ी, मोर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पांव। जाफरी जी बड़े खुश हुए और उनके मुंह से बरबस निकला, वाह, छत्तीसगढ़ी में भी प्रगतिवादी कविता बखूबी की जा सकती है।
1: बिलासपुर में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना में श्री गुप्त जी अग्रणी रहे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे भारतेंदु साहित्य समिति के प्रधान सचिव रहे। गुप्त जी के विषय में स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र ने लिखा है, मैं तो इन्हें अपने साहित्यिक सचेतक के रूप में पाता रहा हूँ। वे संकेत करते थे और मैं कार्यपालन करता था। जिस कार्य में मैं कठिनता बताता वे तुरंत उसे सुलभ बनाने की व्यवस्था कर देते। धन्य है इनका साहस। किसी ने कुछ भार सौंपा, इन्होंने कभी भी नकारात्मक उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा हमारी संस्था का उपनियम बनाना है, तो भी जी हाँ। किसी ने कहा एक स्वागत भाषण लिख दीजिए, तो भी जी हाँ। किसी ने कहा मैं एक पुस्तक लिखा हूँ, इसे पढ़कर जरा सुधार दीजिए, जी हाँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस जी हाँ की पूर्ति वे अविलंब कर देते थे।
0: कालांतर में वे छत्तीसगढ़ी हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े और उनके भिलाई अधिवेशन में अध्यक्ष भी हुए। 1966 की महाशिवरात्रि को भारतेंदु साहित्य समिति बिलासपुर ने इनका अभिनंदन किया। सन 1971 में हिंदी साहित्य मंडल रायपुर द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य परिषद बेमेतरा महाविद्यालय द्वारा अभिनंदन पत्र उन्हें प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन राजनांदगांव अधिवेशन में उन्हें सम्मानित किया गया। गुप्त जी अपनी साहित्यिक सेवा के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी प्रसिद्ध रहे। केशरवानी वैश्य महासभा के कार्यों में उनका अपूर्व योगदान रहा। अपने मधुर स्वभाव के कारण अपनी पीढ़ी के लोगों में वे लोकप्रिय रहे। नई पीढ़ी के लोगों में भी उनका आदरपूर्ण स्थान था। अहंकार और आडंबर से दूर 14 मार्च 1976 को अपनी 85 वर्ष की आयु में वे हमसे बिछुड़ गए। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे लेखन में व्यस्त रहे।
1: नवोन्मुख साहित्यकारों को संदेश देने का जब एक बार उनसे आग्रह किया गया

0: तो उन्होंने कहा कि आज का साहित्यकार सब लिखे, पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की भूमिका पर जरूर लिखे। साहित्य की प्रत्येक विधा पर उसकी लेखनी गतिशील हो, पर सबका आधार राष्ट्र प्रेम और सद्भाव हो। भारत की प्रचलित विभिन्न भाषाओं का अध्ययन कर व उसमें शामिल अच्छी चीजों को राष्ट्र की संपत्ति बनाने का आज के साहित्यकारों को प्रयत्न करना चाहिए। श्रोताओं, आज भी ये संदेश सामयिक है। ऐसे उच्च विचार वाली महान विभूति को अपने हृदय की अंतरतम की गहराइयों से उनकी 136वीं जन्म जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त की 136वीं जयंती पर,
0: रतनपुर के रतन, बिलासपुर के लाल और रायपुर के बाबू प्यारेलाल।
1: प्रायोजक थे बाबू प्यारेलाल गुप्त सृजन पीठ, बिलासपुर, रतनपुर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारे लाल गुप्त की 136वीं जयंती पर वार्ता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बाबू प्यारे लाल गुप्त, सृजन पीठ, बिलासपुर, रतनपुर। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:11 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: आशिकी टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें तुलसी कुमार और केके की थी, इरशाद कामिल के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: सावन की हवा में घुली है मिट्टी की सोंधी खुशबू, हरियाली का प्यार प्यार और नोक झोंक। पहला लाभ गीत सुन रहे थे, मुबारका फिल्म से मीका सिंह की आवाज थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था।
1: कितने
0: फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। बार बार देखो फिल्म का ये गीत अमर आरशी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाजों में। अमरीक सिंह और कुमार के बोल हैं।

से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धोले जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।

बार बार देखो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरदिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

0: बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा सवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा, और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स, जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सेलेक्ट किया, और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी वो थी मंझली दीदी, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया मैं।
1: 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था हा माझा मार्ग एकला, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली दीदी, ज्वेल थीफ, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी, मेला और कृष्ण लीला।

बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले सचिन के जिगरी दोस्त थे जूनियर महमूद। दोनों ने मिलकर 15 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें से उल्लेखनीय फिल्में थीं ब्रह्मचारी, नायक थे शम्मी कपूर।

बिरला ही होगा जिसने 1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे,

0: गीत गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए। अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका वधू। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

1978 में सचिन की 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में वे नायक थे और 1 फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडल

0: kapuchi kapuchi dum dum kishiki kishiki kwam kwam kapuchi kapuchi dum dum.
1: Film Trishul se सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्में थीं अवतार, सुरसंगम और सत्य पे सत्ता। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े। पारद इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू। 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। नायक थे सचिन। लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे। उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्मों में बतौर नायक और सहनायक दिखा

1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में। फिल्म थी नवरी मिले नवर्याला। नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया। उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी। और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठाया।

0: इस गीत के नायक की गाड़ी चाहे जिस दिशा में गई हो, सचिन के कला जीवन की गाड़ी जा रही है सफलता की ओर।
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। कोंडागांव में हीलर हर्बल गार्डन योजना का शुभारंभ हुआ। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय तकनीक और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी RSSDI के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया और मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत की 70% से अधिक आबादी 40 साल से कम उम्र की है, इसलिए देश की युवा आबादी के स्वास्थ्य और उत्पादक क्षमता की रक्षा करना 2047 के विजन के लिए जरूरी है। सुकमा में स्वतंत्रता दिवस पर 112 आत्मसमर्पित युवाओं ने तिरंगा थामकर शांति, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। पुनर्वास केंद्र में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने पुनर्वासित महिला अमीला पदामी को ध्वजारोहण का अवसर दिया। राष्ट्रगान के दौरान सभी युवाओं ने तिरंगे को सलाम किया। शासन की पुनर्वास नीति के तहत ये युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर सम्मानजनक जीवन और समाज की मुख्यधारा में लौटने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर में राजभाषा आयोग के कार्यालय स्थापना दिवस पर साहित्यिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी भाषा की सेवा में योगदान देने वाले वरिष्ठ साहित्यकारों और भाषा सेवियों का सम्मान किया गया। साथ ही राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित 26 पुस्तकों का विमोचन हुआ। प्रदेश भर से आए साहित्यकारों और विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर विचार रखे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजन यादव ने भाषा, साहित्य और संस्कृति के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने की आवश्यकता बताई। कोंडागांव में हीलर हर्बल गार्डन योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर 48 वैद्यों को अपनी बाड़ी में औषधि पौधों का उद्यान विकसित करने के लिए प्रथम किस्त का स्वीकृति पत्र दिया गया। योजना के तहत वैद्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलेगी। सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वनौषधियों के संरक्षण पर चर्चा हुई। लगभग 200 वैद्य सम्मेलन में शामिल हुए। रायगढ़ जिले की पीएम श्री सेजस धर्मजयगढ़ की कक्षा 11वीं की छात्रा अर्चना एक्का के नवाचार इको ब्रिक बैंक का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। अर्चना ने प्लास्टिक कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर उससे फर्नीचर सहित उपयोगी वस्तुएं बनाने की पहल की है। अर्चना की ये पहल विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के लिए प्रेरित कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। जशपुर जिले के सन्ना तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण डूमरकोना से हर्राडीपा जाने वाली सड़क बह गई है। जोकारी नाला के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस घटना से कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। कोंडागांव में हीलर हर्बल गार्डन योजना का शुभारंभ हुआ और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत। प्रस्तुति है श्वेता पांडे की। तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम सुनवैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला, आप मन के रेडियो मितानिन श्वेता पांडे के राम राम हे और जय जोहार हे। त संगवारी हो, आप मनला बता देवथन कि ए कार्यक्रम निर्माण मा तकनीकी सहयोग दिए हवे गौरी शंकर कौशिक जी मन। त चला संगवारी हो, बेरा नी करबो ज्यादा और देखथन कि हमर कौन कौन श्रोता मितान मन फोन करे हे और का का गोट बात लेके आए हवे। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम मा स्वागत है। कौन बोलत हो और कहाँ ले बोलत हो?
1: मैं रविंद्र तिवारी बोला, सवार गांव पामगढ़ से।
0: का हाल चाल है आप मन के भैया?
1: सब बढ़िया है।
0: तो आज के कार्यक्रम मा आप मन के लगे पहला फोन कॉल, तो बहुत बहुत स्वागत है तुहर गोट हमर गीत ये कार्यक्रम मा आप मन के। का करते हो रविंद्र भैया आप?
1: किराना दुकान है।
0: अच्छा, खेती बाड़ी भी करते हो? तो अभी का लगाए हो आप?
1: धान।
0: अच्छा, आओ बतावा गोट बात का लेके आए हो आप कार्यक्रम में?
1: सब बढ़िया है, पानी नहीं गिरा से बढ़िया।
0: हाँ हाँ,
1: और बस खेती बाड़ी है।
0: हम्म,
1: खेती बाड़ी करा था और कार्यक्रम सुन था आप, बहुत दिन में 3-4 महीने लगी से फोन है।
0: हाँ हाँ, बढ़िया की बात है। तब तो
1: सब श्रोता वाला टाइम फिर सुन भाई लगाए की नहीं?
0: हाँ, ए बने के बाद बोले हो आप। ऐसने का भी श्रोता है ना, सब जन के ऐसी सोच रही ही ना, तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया चली और जतका आउ श्रोता मन भाई बहनी मन है तेन मतलब भी मौका मिली कार्यक्रम में शामिल होए के।
1: हाँ हाँ, तो बहुत पुराना श्रोता रेडियो के।
0: हाँ,
1: पिताजी के हमारे समय सुना था रेडियो।
0: हाँ,
1: मैंने सन 50-60 मरीज हमारे पिताजी करा रेडियो, उसके दिन के चला थे हमारे।
0: अच्छा, तो आप मोबाइल में सुनते हो कि रेडियो में सुनते हो?
1: मोबाइल में सुनता।
0: मोबाइल में? हाँ, आजकल तो जतका श्रोता संगवारी मन है तेन मन मोबाइल के ऐप में सुना थे कार्यक्रम ला।
1: आप फोन वाला था?
0: मैं श्वेता पांडे बोला था भैया।
1: पांडे,
0: ठीक है, बने लगी से आपसे गोट बात करके और देख लेते हैं ना आगू जिन और श्रोता मन है फोन करे वाले है तेन कौन कौन है, आप मन के सब जत का भी संगवारी मन है तेन मन।
1: हाँ,
0: जय जोहार, राम राम भैया।
1: राम राम।
0: हेलो।
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत माँ स्वागत है आप मन के।
2: श्वेता दीदी, जय श्री राम।
0: जय श्री राम भैया, जय जोहार।
2: मैं मुकेश गोस्वामी, धनगांव गोसाई, जिला मुंगेली बोला था। दीदी,
0: का हाल चाल है आप मन के भैया?
2: आज दीदी बढ़िया। हाँ,
0: अभी
2: खेती किसानी के निंदाई कोड़ाई बूटा चला दीदी।
0: अभी कहाँ हो, खेते में हो कि घर में हो?
2: मैं घर में रही था दीदी, कावर के मैं नेत्रहीन हूँ तो मैं घरे में रही था।
0: हाँ,
2: जाते खेत
0: चीन डालो मैं आप ला। हाँ, बात हो चुके हैं मोर आपसे पहली भी।
2: हाँ दीदी,
0: और का चलत है अभी?
2: ए दीदी, रेडियो सुनात रहे।
0: हाँ,
2: तुम्हार मन की याद इस समय कहा, आप दीदी मन में बात कर लिया जाए।
0: हाँ, आपके फोन भी लग गए
2: करके रेडियो लगाए।
0: हाँ, वही बोला तो। हाँ, फोनो लग गए आपके।
2: हाँ,
0: का गोट बात है तेनला बतावा भैया, मुकेश भैया।
2: एक दीदी, मौसम है कैसे करी, अभी हमार को खेत खार पूरा गिर सिवाय।
0: हाँ,
2: धान मन पूरा डूब गिर दीदी। अब धान ला दीदी का घामो की जरूरत है पानियों के, दोनों के ही जरूरत माँ, धान हाँ ठीक से हो पाते दीदी तक आए, पानी है पानी झड़िए पानी करा था, हम तो करवे नहीं करते, एक हफ्ता घाम करती ना तो मस्त होती दीदी।
0: हाँ भैया, मौसम है, मौसम के का ठिकाना है ना, थोड़ा थोड़ा देरी माना बदल जाते मौसम, पता नहीं चले।
2: अब दीदी जब ले रजूतिया हो है तब ले तो मैं देखा था एक हफ्ता इसे घामे नहीं करे दीदी हमारे तरफ तो।
0: हाँ,
2: बादरे बादर निकला है।
0: हाँ, यहाँ भी आज बारिश हुआ थे, पानी गिरा थे अभी
2: हमारे रात के टिपका रही दीदी, एकदम ज्यादा नहीं गिरे है।
0: ठीक है मुकेश भैया, बहुत अच्छा लगी से आप फोन करे हो, आपसे गोट बात कर लिए हमन।
2: ठीक है दीदी।
0: हाँ, इसने मया पीरितला बना के रखिया और कार्यक्रम ला सुनत रही है आप मन।
2: जय श्री राम दीदी।
0: जय श्री राम भैया।
3: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में आप मन के लगे है फोन, तो अपन सुघर नाम बता देवा और कहाँ ले बोलत हो तेनोला बता देवा।
3: हाँ, मैं आदर्श ग्राम लोटना पारा ले, जिला कोरबल में नाथ

0: बोला था दीदी।
1: हाँ मेघनाथ भैया, कहाँ
0: हाँ
1: गोट बात लेके आया हो आप मन आज?
0: हाँ उदय स्वतंत्रता दिवस मना हम दीदी। बढ़िया
1: हाँ
0: स्कूल में मस्त बढ़िया ढंग से और सबो कंपेयर मल्ला तहु मल्ला भी स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक हार्दिक बधाई जात है।
1: हाँ जम्मो श्रोता संगवारी मनला भी पूरा आकाशवाणी परिवार के तरफ ले 80वें स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई है भैया सबो जनला।
0: हाँ आओ दे आवैया नाग पंचमी एकरो बधाई है दीदी।
1: पूरा तीज त्योहार मन चालू हो जाही।
0: हाँ ये नाग पंचमी बारे से बता था दीदी थोड़ा सा।
1: हाँ भैया।
0: पीपर पान में दोना बना करके दूध लाई न रख देथन आओ विनती करथन नाग देवता से खेती खार रक्षा करी हो पानी कानी गिरी हो इसे कह के ना पुरखा में चला दे तो मानत आथन दीदी मानत रहिबो नहीं।
1: बिल्कुल, ये हमारे वाचिक परंपरा है जिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आते तिन जरूरी
0: हाँ
1: है ना एक दूसर ला
0: हाँ
1: हस्तांतरित होना।
0: हाँ सावन में सवनाही रमन गाथन दीदी शाम शाम के
1: हाँ।
0: 5 बजे से 8-9 बजे रात तक ले गाथन बढ़िया। हाँ
1: बहुत अच्छा जानकारी दिए हो मेघनाथ भैया।
0: हाँ आओ मोरे घी दोस्त है रेवती रमन तिवारी बोईदा से दीदी वो लगाते रहते फिर लगबे नहीं करे दीदी।
1: हाँ लगते तो फोन बीच बीच में आए हैं फोन उखर।
0: हाँ पानी मस्त गिरा थे बढ़िया भी निंदई है अभी हमारे यहाँ लास्ट है की ओर आ है अब। हाँ इतना पानी गिरे है कोरबा में के अभी 8 गेट लग खोल दिए गए है
1: हाँ
0: भांगो बांध के वो
1: हाँ
0: नीचे भी मतलब सचेत कर दे है कि थोड़े सावधानी रही है इसे कह के अंबिकापुर भी में भी पानी जोरदार बतात है तो
1: हाँ अभी बहुत जगह पानी है।
0: सावधानी भी रखना है नहीं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ
1: ठीक है मेघनाथ भैया, तो इसने ही हमन ला फोन लगा के हमार कार्यक्रम ला सुन के हमन ला अपन आशीर्वाद देत रही आप मन,
0: हाँ दीदी
1: है ना? राम राम,
0: हाँ
1: जय जोहार भैया।
0: राम राम जय जोहार दीदी। हेलो
1: राम राम, जय जोहार हे।
0: राम राम दीदी राम राम
1: भैया नाम बतावा अपन,
0: चौराम वरुण बोले तो हटा पा दीजिए
1: का हाल चाल है आप मन के भैया?
0: बहुत बढ़िया दीदी।
1: हाँ या मैं कुछ नहीं
0: हेलो
1: बोलूं तो आप एकदम शांत हो
0: नहीं
1: जाते
0: तो हाँ
1: हो।
0: तो बोलो दीदी आप भी करो क्या आवाज थोड़ा कम
1: नहीं, कार्यक्रम के नाम है ना तुहर गोट हमर गीत, आप मन
0: जी
1: अपन गोट
0: जी
1: बात ला ये कार्यक्रम में शामिल करिया था, हमन सुघर सुघर गीत ला सुनाबो आप मन ला।
0: जी
1: बतावा फिर गोट बात का लेके आए हो आज ये कार्यक्रम में?
0: बढ़िया दीदी आप मन के बहुत दिन फोन लगे साल 2 साल हो लगा नहीं लगा दीदी।
1: अच्छा हाँ, चिट्ठी पत्री तो आप मन के आत रही थे चुवाराम भैया।
0: जी हाँ वो बचपन में जी हमारे साथ करते भेजते भी बेचारा
1: हाँ मेल भी आते, चिट्ठी भी आते, चिट्ठी मिली भी आते, है ना? आपकी पसंद माटी के स्वर सब में तो शामिल होते आप मन के नाम है।
0: जी
1: ठीक है चुवाराम भैया, वो देख लेते ना आगू जिन श्रोता है तेन कौन है फोन करिए हमला।
0: जी हाँ
1: हाँ
0: जी
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: भैया।
0: दीदी
1: हाँ हेलो,
0: जय राम दीदी
1: जय राम भैया, स्वागत करत हन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत माँ।
0: हरियर हरियर रुखराई दिखत है हरियर दिखत है खेती खार हरियर हरियर रुखराई दिखत है हरियर दिखत है खेती खार जम्मो कंपियर और श्रोता साथी मल्ला शांति नगर भाटा पारा के मिलाओ कुलदीप के नमस्कार नमस्कार
1: आपो मन ला नमस्कार। बतावा।
0: समय है तो कुछ गुनगुना दो का दीदी।
1: हाँ भैया आप तो हर कार्यक्रम में जब भी फोन लगा था गुनगुना था जरूर, वही तो
0: आज भी
1: आपन के
0: गुनगुना
1: पहचान
0: दो
1: है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपन के।
0: चल बाजार जावन ओ गोरी भाठा पारा के बाजार जावन चल बाजार जावन ओ गोरी भाठा पारा के बाजार जावन मैं बाजार में जाऊं रे बिलुआ भाठा पारा के बाजार में जाऊं मैं बाजार में जाऊं रे बिलुआ भाठा पारा के बाजार में जाऊं हटरी बाजार में जाऊं खोजबो हमन सस्ता हटरी बाजार में जाऊं खोजबो हमन सस्ता तुलसा मल के होटल में खावा दे खस्ता तुलसा मल के होटल में खावा दे खस्ता चल बाजार जावन ओ गोरी माठा पारा के बाजार जावन चल बाजार जावन ओ गोरी माठा पारा के बाजार जावन तैले दे क्रीम पाउडर मैलू माला तैले दे क्रीम पाउडर मैलू माला मोला कई थे गोरी नारी तोला कई थे काला

0: मोला कैसे गोरी नारी तोला कैसे काला मैं बाजार में जा रे बिलुआ माठा पारा के बाजार में जाऊं तैले भी सेव अंगूर मैलू केला तैले भी सेव अंगूर मैलू केला तंगे माना बिल जा बिले छोड़ चा केला मैं बाजार में जा रे बिलुआ माठा पारा के बाजार में जाऊं मैं बाजार में जाऊं रे बिलुआ आठा पारा के बाजार में जाऊं। धन्यवाद दीदी।
1: बहुत बढ़िया भैया जी। हजुरागी से सुन के एकदम अच्छा लगी समझला।
0: बहुत रचना है दीदी मोर पास पे तो मैं एक ठो संस्था चलाने वाला रहे।
1: हाँ बताया रहे हो मुला याद
0: है। बता रहे हैं दीदी हाँ, हाँ। लंबा बात नहीं ले श्रोता मल्ला टाइम दे रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी
1: ठीक है भैया। राम राम जय जोहार।
0: जय जोहार दीदी। जय जोहार। राम राम।
1: हेलो।
2: राम राम दीदी।
1: राम राम भैया।
2: मैं भाटा पारा जतरंगी बुलाते रहे दीदी। हीरू राम साहू।
1: हाँ हीरू राम भैया।
2: हाँ दीदी
1: बताओ बताओ गोट बात ला बताओ भैया।
2: हाँ तो सब ठीक ठाक है बहनी दे पानी का जी बढ़िया आवाज है।
1: हाँ
2: आज नाग पंचमी भी है। तो पूजा पाठ चला बहनी।
1: का करते हो नाग पंचमी में?
2: वही दीदी सह का है मंत्र उठाते उठाते पूजा पाठ नाग पंचमी बना के दिन भर बैठन मस्त एकदम सब संगे संगे संगवारी बैठ के अपन मंत्र अंदर लौटाथन बहनी।
1: अच्छा
2: दूध फूल उल चढ़ाथन दूध करू के खाथन।
1: अच्छा आओ काका।
2: हाँ
1: खेती
2: धान पान के चला लगे चला दे दी।
1: बढ़िया है
2: लगाई।
1: अच्छा है बढ़िया है। और कुछ संदेश है कुछ गोट बात है?
2: अब संदेश यही दीदी अब हमारे तरफ से आप जम्मू धोसक मल्ला नाग पंचमी तिहार है दीदी गड़ा गड़ा बधाई बहनी।
1: आपो मल्ला बहुत बहुत बधाई भैया हमन सब जन के तरफ ले।
2: रमान भी हमारे गांव दो जगह।
1: हाँ अभी तो जतका गांव है शहर है सब जगह सावनाही रामायण जन है चलते।
2: हाँ ना बहनी का है एक मिनट पूरा गाथन बहनी एक मिनट पूरा लगातार चलती दीदी
1: यही तो हमारी संस्कृति है। हाँ ठीक है भैया बहुत बढ़िया लगी से गोट बात करके हीरू राम भैया आप मन से। और आप मन से गोट बात के बाद हमन एक सुगर असन छत्तीसगढ़ी गीत ला सुनवाबो आप मन ला। ठीक है राम राम भैया जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार बहनी।
1: तलेवस ना एक गीत जिला गाय हवे सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान जी मन।

0: हेलो,
1: राम राम हे, जय जोहार हे। कतका
0: जय जोहार दीदी, जय जोहार। बड़ दिन बाद फोन लगे है दीदी।
1: दिन होइस?
0: अब कतका दिन हो गए, सुरता घलाव नहीं है दीदी, फोन लगे मोर।
1: अच्छा, तो भैया अपन बने असन सुघर नाम ला बता देते हो हमन ला।
0: जी मैं ग्राम उच्च भट्टी ले मुकेश गोस्वामी बोला था दीदी।
1: मुकेश गोस्वामी?
0: हाँ दीदी
1: एक ठी नऊ श्रोता अभी हमार कॉल करी से भैया मुंगेली तरफ ले मुकेश गोस्वामी।
0: जी, मैं ग्राम उच्च भट्टी ले बोला था दीदी। और काय बिलासपुर के तो मैं पुराना श्रोता हूँ। हाँ, कार्यक्रम तू हर गोठ हमार गीत पोनिन फरमाई ये मेरे तेरे गीत सुने अमराइये सब कार्यक्रम मोला बहुत ज्यादा पसंद आवे। आपन मेरे कार्यक्रम सुघर सुघर गोठ बात करे बर मिलते तो आप मन एकदम गदगद हो जाते दीदी।
1: ता तो बने लगत होही, अतका दिन बाद फोन लगे है आप मन के तो।
0: मन है एकदम गदगद हो गए दीदी, बिकट दिन बाद फोन लगी से तो
1: हाँ।
0: बने टाइम देट ट्राई करत रहे लग जती जैसे कैसे और
1: हाँ।
0: भगवान के देखा संजोगी कहा लग गए फोन हम।
1: बधाई आप मन ला, आप मन के फोन लगे है, अब कार्यक्रम में शामिल हो जाही। आओ बतावा का करता हो आप।
0: जी दीदी, गांव में मंदिर है सती राई मंदिर हमारे यहाँ, वही ला मैं पूजा पाठ करता हूँ दीदी, पुजेरी हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ पुजेरी करत करत साथ में कार्यक्रम के थोड़ा बहुत आनंदो ले लेता हूँ मैं।
1: हाँ
0: खेती किसानी के बात है आम सब सब मन कार्यक्रम में सुनता हूँ मैं बड़ा ध्यान से।
1: घर में कौन कौन
0: वही
1: है
0: जन
1: मुकेश भैया आप मन के?
0: मोर और शिवन्या गोस्वामी एक जन कक्षा पांचवी में पढ़ते एक जन कक्षा चौथी में। कल यदि 15 अगस्त में गए रही लड़का मन तब महूल बुला के ले गए रही पापा तुम्हारो नेवता है कहके, तो मैं कहा चला भाई नेवता है तो आज कार्यक्रम तुम्हारे देख लेबो दादी के अलग मना लेबो तुम्हारे संग में।
1: बहुत बढ़िया है।
0: तो गए रहे हूँ बड़ा आनंद आई अच्छा लगी कार्यक्रम बढ़िया रही स्कूल में। अब बड़े दिन में फोन लगे ना दीदी, तब कहा बताऊ मन है गदगदा गए। हाँ
1: आप सोचे रही हो कि फिर फोन नहीं लगी मोर?
0: आज मैं 10:30 बजे ट्राई करा था दीदी, लग जती कैसे कैसे और ले देखे यदि लगी से कई जगह अगली बार भी ट्राई करे हैं तो नहीं लग रही तो दादी। अब ये दारी लगी तो अभी सावन के पर्व घराव चला थे दीदी, तो सावन के पर्व मर आकाशवाणी परिवार लग गाड़ा गाड़ा बधाई है हमार डहर ले हमार परिवार डहर ले।
1: बिल्कुल भैया, बधाई ला स्वीकार भी करत हन, और आपके जम्मो परिवार ला, आप मन के जतका मितान मन है तेनो मन ला हमू मन बधाई देवत हन। हाँ
0: नाथी मन आते जल चढ़ाए बर यहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग है पर मंदिर में बहुत पुराना मंदिर है दीदी, एक आग बार आपो मन आवा है मन के
1: हाँ, बिल्कुल आबो हमन।
0: मेला घराव लगते बसंत पंचमी यहाँ बढ़िया माता के मंदिर है
1: हाँ।
0: और बड़ा अच्छा लगी दीदी आप मन से गोट बात करके।
1: हाँ मन ला अच्छा लगते भैया, जतका हमारे श्रोता मितान मन है, अक्का जुन्ना जुन्ना श्रोता है तिन मन फोन लगाते हमन ला, तो हमन ला भी बहुत खुशी होते।
0: कार्यक्रम तो हमन सुन के आओ आनंद लेते हैं अपन गोट बात ला सुन के और संगवारी मन के गोट बात ला सुन के फोन नहीं लगाए तो ना दूसरे संगवारी मन के गोट बात ला सुन के आनंद ले लेते हैं। चला हमार नहीं लगी तक आवाज कोई

0: दूसरा संगवारी मन के तो लगी से।
1: हाँ ठीक है मुकेश भैया, इसने मैं पीरियत बना के फोन करत रही है हमन ला, और चिट्ठी पत्री तो आप मन के मिलत रही थी हमन ला।
0: जी दीदी जी दीदी,
1: जय जोहार भैया, राम राम।
0: जय जोहार दीदी, राम राम, जय जोहार।
2: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोट हमार गीत माँ बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ दीदी, मैं बोईदार बोलत हूँ दीदी, रेवती रमन तिवारी जी।
1: हाँ का हाल चाल है रेवती रमन भैया आप मन के?
2: सब बढ़िया है दीदी, अभी लगात लगात थक जाते हैं, 20-25 बार लगा हूँ।
1: अभी तो एक जने श्रोता हा हमर जिन्हें आप मन के मितान दोस्त है आप मन के, तेन आप मन के नाम ल लिए है।
2: हाँ दीदी, इंद्रनाथ पटेल। कौन बोला था दीदी?
1: मैं श्वेता बोला था भैया।
2: अच्छा हाँ दीदी, श्वेता पांडे दीदी।
1: हाँ
2: दीदी, हाँ बहुत ही मन लगे दीदी।
1: हाँ
2: साल भर लगात लगात थक जाते रही लगत जिसे।
1: अच्छा अच्छा,
2: बहुत ही मन लगी सी दवा, पानी तो मस्त गिरा दीदी, आज सुबह मस्त गिरी पानी है। बढ़िया दीदी, आप मन बढ़िया है ना?
1: हाँ एकदम बढ़िया भैया, आप बताओ। हाँ, का चलत है अभी?
2: हाँ, बस दीदी अब खेती बाड़ी चलत है की देवा, छोटा कन ठेला खोले हुई मैं बैठे रहता हूँ। हाँ हाँ, संगी बन के बहु नाम लेना चाहत हूँ दोस्त बन के की देवा।
1: हाँ हाँ स्वागत है आप मन के भैया, बिल्कुल नाम लेवा।
2: हाँ मैं नाथ पटेल
1: है,
2: छविलाल पटेल। हाँ बढ़िया, एक संग गाथन बजाथन जाथन जाथन की देवा। हाँ दीदी, हाँ
1: ठीक है रेवती रमन भैया।
2: हाँ दीदी, हाँ खुशी तो लाग दीदी के एक ठीक गाना सुना दिया बढ़िया।
1: देखा था भैया, तुहर गोट हमर गीत है, तो अब आप मन के गोट बात, और हम अपन पसंद से गीत ला सुनवाबो, और जेन भी गीत ला सुनवाबो आप मन ला बहुत पसंद आई भैया।
2: हाँ दीदी, हाँ बढ़िया सुना दिया दीदी।
1: हाँ बढ़िया गीत ला सुनाबो, पहले ये देख लेते ना अभी, और श्रोता मन से बात कर लेते ना मन गोट बात।
2: हाँ
1: हाँ, राम राम भैया, जय जोहार। हेलो
3: हेलो,
1: राम राम, जय जोहार।
3: राम राम, जय जोहार।
1: कौन मयारू मितान के फोन लगे है, और कहाँ ले बोलत हो तेनो ला बता देते हो भैया।
3: मैं मदनपुर कवर्धाली श्रवण कुमार साहू बोला था, आप मन कौन बोला था मैम?
1: मैडम मत बोल भैया, दीदी बोल देते तो बने लगती हमारे, थोड़ा सा मया बढ़ जाते।
3: तो दीदी और हमारे लिए?
1: हाँ मैं श्वेता बोला था भैया।
3: हाँ श्वेता दीदी, आपसे बहुत बात करके तो बड़ सुखल लगते हमारा।
1: हाँ।
3: और आपके कार्यक्रम कितना नियमित सोता हूँ, मेरी तरी गीत सुने, चाहे चिट्ठी मिली कार्यक्रम है, चाहे गांव का गीत है, तुम्हार वोट बात है, सब फोन कार्यक्रम है, ग्राम सभा है, युवा पसंद है, ये कार्यक्रम ला मैं सुनत रही था और गुनत रही था, और एक हस्ते हम ला भरपूर ज्ञान सीख प्रेरणा मनोरंजन सबो प्रकार के समावेश मिलत रही थे हमारा। ऐसे है आकाशवाणी बिलासपुर के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: हाँ यही तो ध्येय है। आप कहाँ करते हो श्रवण भैया?
3: मैं शिक्षक हूँ दीदी, मिडिल स्कूल के शिक्षक हूँ।
1: हाँ
3: लड़का मल्ला पढ़ाता हूँ।
1: तो लड़का मल्ला बोलता हूँ रेडियो सुने भर?
3: आओ लड़का मल्ला मैं बोलता हूँ कि बाल वाटिका है, और जितका है बाल कार्यक्रम किसलय वगैरह है, ये कार्यक्रम सुने करो, एकर से हम ज्ञान सीख प्रेरणा जितका सामान्य ज्ञान के है ये चीज जाने के मौका मिली, आप मन के आगे भविष्य के लिए काम आई, ये मैं सलाह देता हूँ।
1: बहुत अच्छा है भैया, आप अतका अच्छा संदेश देता हो लेका मनला। ठीक है श्रवण भैया, और कुछ गोट बात आप मन के शामिल करना है कार्यक्रम में?
3: और मैं लेका मनला यही सलाह देता हूँ कि आज हमारे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते जाते, तो प्रदूषण ला बचे बर हमला पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना है, और दूसर लोगन मल्ला भी आसपास के व्यक्ति मल्ला भी हमला जागरूक करना है कि पेड़ पौधा लगाओ तो बढ़िया हमारे पर्यावरण बढ़िया संतुलन बने रही, घर से वर्षा हो ही और हमला बढ़िया स्वच्छ हवा मिली, ये संदेश मैं देत रहता हूँ।
1: आप मन के संदेश हमारे जतका भी श्रोता संगवारी मन है तेन मन ला जावत है, और आप मन के संदेश के बाद अब सुनवात हन एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत, और आप मन ला फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद है भैया।
3: आपो मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: राम राम, जय जोहार भैया।
3: राम राम, जय जोहार।
1: अब जिन गीत सुनवाए वाले हन तेन ला गाए हवे कांति साहू, चतुर राम साहू और उखर साथी मन।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीत के बाद अब घड़ी हा हमन ला बोलत हवे कि कार्यक्रम ले विदा लेहे के समय आ चुके है। त आप मन ले विदा ले के पहली आप मन ला बता देवन कि ये कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहयोग रही से गौरी शंकर कौशिक जी मन के। त विदा देवा कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत ले और झोंका भैया राम राम और जय जोहार अपन रेडियो मितानिन श्वेता पांडे के।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत, प्रस्तुति थी श्वेता पांडे की।
2: कुछ यादें अतीत की।
3: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे गजलें सूफियाना चीजें खूब सीखी।
2: कुछ बातें वर्तमान की।
4: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
2: कुछ सपने भविष्य के।
5: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
2: कुछ किस्से अनकहे।
6: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
2: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी

0: चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। आप तो ऐसे ना थे फिल्म का गीत हम सुनवा रहे हैं आपको मनहर उदास की आवाज में। निदा फाजली के बोल है और संगीत निर्देशन उषा खन्ना का है। इस गीत को पसंद किया है लुटरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज ने। हथकेरा भाटापारा से हमारे साथी हैं पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बेलसपुरिया ने। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चांटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि देवांगन। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोआराम वर्मा, सूरज बारिकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम, अश्वनी पांडे। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ। लच्छनपुर से हमें फरमाइश भेजी है रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवहाणकर। बहादुरा नागपुर से हमारे साथी हैं वैशाली, शैलेश गवहाणकर, सुमित ध्वनि गवहाणकर। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार हाव्या, टानिया रजक ने। हटरी चौक बिलाईगढ़ से किकराम देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका, रेणु देवांगन। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से हमारे साथी हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू। डोंडी लोहारा बालौद से इस गीत को सुनना चाहा है देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार तामुरिया, डॉली, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया ने। बन बघेरा से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, प्रभाव पटेल। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, अयाज, अल्फेज खान, हजीरुन निशा, सादिया खान। बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना मनहर उदास की आवाज़ में, आप तो ऐसे न थे फिल्म से। अगले गीत के फरमाइश करता है बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलौरिन रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, बंगला मटिया बालौत से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशु, आशुतोष अंगारे, धरसीवा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा, अनुराधा अल्पना यादव ने, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हमारे साथी हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा ने, सुरसुली बालौद से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हमें फरमाइश भेजी है सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन ने, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और समस्त माखीजा परिवार, साकरा भूमिया तिलदा से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद, खुशांत निषाद, सिमगा से प्रदीप जैन, मुन्ना जैन और साथी, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने, रचनाकार है जावेद अख्तर और फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर. अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप. मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार.

0: स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, पत्रों और गीतों का सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा। इसके पहले आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथी स्वीकार करें नमस्कार उमाशंकर पांडे का। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव जी की आराधना का सावन माह का आज तीसरा सोमवार है। शुभकामनाएं। बड़े सुबह से ही सभी शिवालयों में पूजा अर्चना तथा भक्ति भाव का माहौल है। सभी मंदिरों में शिव भक्तों का बड़ी संख्या में आना जाना दिखाई दे रहा है। मंदिरों के पास बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, यहाँ पूरी सावधानी के साथ चलें, कम से कम गति में चलें। साथियों, इसी संदर्भ में आज ही जिले में 150 से 2000 स्त्री पुरुषों का कांवड़ यात्री का दल लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर जल अभिषेक करेंगे। ये सभी कांवड़ यात्री आज प्रातः 8 बजे ग्राम सागर थाना हिरी के सागर मैया तालाब से जल लेकर यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो ग्राम कुरेली, खजरी, उड़ेला, बुटेना, मुरु, छोटे मेड़ पार होते हुए ग्राम धौराभाटा बिल्हा स्थित भूलकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। यद्यपि इस आयोजन में पुलिस व्यवस्था होगी, फिर भी सभी कांवड़ यात्री एवं इसके आयोजकों से यही कहना है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी कांवड़ यात्री सड़क के किनारे एक भाग में ही चलें, पूरी सड़क में बिखर कर ना चलें, ताकि आम आवागमन भी सुचारू रूप से चलता रहे। कांवड़ यात्री अपना कांवड़ कंधे पर इस प्रकार रखें जिससे कांवड़ का एक सिरा आपके सामने और दूसरा आपके पीछे हो, न कि अगल बगल। इस मार्ग में चल रहे सभी वाहन चालक विशेष सावधानी से चले, धीरे चलें। मित्रों, आज अखिल भारतीय मजदूर संघ के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दोपहर 1 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में धरना प्रदर्शन एवं इसके बाद यहां से रैली स्वरूप चलकर कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक से नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने का आह्वान किया गया है। धरना प्रदर्शन एवं रैली के सदस्य ये भलीभांति जानते हैं कि आपका प्रस्तावित मार्ग शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, इसलिए यह तय करें कि रैली के कारण शासकीय कार्य या आम यातायात किसी भी कीमत में बाधित न हो। अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन भी 1 सेकंड के लिए न रुकने पाए। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत हम लेकर आए हैं टूटे खिलौने फिल्म से, येसुदास की आवाज़ में। कैफी आज़मी गीतकार हैं, बप्पी लहरी संगीतकार हैं और इस गीत को सुनना चाहा है पट पर भाटापारा से मोतीलाल भटपरिहा, संतोष कुमार यादव मुंडूल यादव ने, ग्राम सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार यादव, प्रीति यादव, योग्य कुमार यादव, मोक्ष कुमार यादव ने, भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकार मुंधड़ा, रावण भाटा, भाटापारा से बबला यादव, रिखीराम यादव, कमलेश्वरी यादव, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू युग कुमार झेरिया, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका गणेश, कार्तिक युवराज राउत, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढावेश यादव, हदबन नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव, देव कुमार यादव, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, जांजगीर महेंदा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुम लता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप, इंद्रा।

नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो अब्दुल ज़मीर मोहम्मद अलीम आसिफ नाइम रजा शिवाजी चौक राजम से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार कृष श्रीवास्तव अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा दिव्यांश रूही और लवी श्रीवास्तव ततरिंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा पलारी बलौदा बाजार से नितेश कुमार देवांगन तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन और मगर लोड से पुनुराम साहू तेजस्वरी साहू राजश्री राजवीर साहू। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का आखिरी गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी आप सुन रहे थे टूटे खिलौने फिल्म का गीत येसु दास की आवाज़ में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
3: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
4: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
5: जी दादाजी।
6: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
7: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल

0: अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
1: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
2: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूँ? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
1: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
0: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
1: दादी लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
1: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
6: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
1: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
6: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
1: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
6: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
1: मैंने कहा ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
6: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
1: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
7: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
7: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
6: जी।
7: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
6: जी जी अभी लाई। लो बेटा काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है।

0: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
1: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ। शाबाश।
2: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
1: कैसी तबीयत है बेटा?
2: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो। चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा। अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी।

0: हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? हैं? बोलो, ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
3: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।

0: ऐसे नहीं मानेगा।
1: साहब मत करो साहब।
0: चल सिपाही।
2: यस सर।
1: साहब
0: इसको हंटर मारो।
1: साहब
2: जी सर।
1: साहब
3: कमाल जी, कमाल जी से
4: कमेंगे।
1: हम लोग करो।
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिदो और कान्हो।
6: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
7: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिदो और कान्हो नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
6: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
7: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
0: Amen. तुम्हारा नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
0: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
1: जी।
0: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
1: जी, ये मेरी जमीन है।
0: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
1: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
0: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ली जाए।
1: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
0: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
2: जिसे
0: आगे बढ़ाओ और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
2: जिसे
0: और खेत में रात का पहरा बिठा दो।
2: जिसे
0: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
2: जी सर।
1: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो। साहब साहब
0: आओ, ऐसे नहीं मानेगा।
1: साहब मत करो। साहब
0: चल सिपाही।
2: यस सर।
1: साहब
0: इसको हंटर मारो।
1: साहब
2: जी सर।
1: साहब साहब मत करो। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब
6: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने

0: 올리다가
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठकी बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ, ठीक कहा तुमने।
3: हाँ,
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: जब
6: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
7: सही बोले, सही कहे।
6: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
8: हाँ, सही कहा।
6: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
7: तो भैया सही बात
8: कह रहा है। बातें सही कह रहा है।
6: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
8: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
6: लेकिन भाइयों, भाइयों, अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
9: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।

0: अब करो या मर जाओ,
1: अब करो या मर जाओ।
0: अबुआ राज अबुआ किसुम,
1: अबुआ राज अबुआ किसुम,
0: अबुआ राज।
2: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
3: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
3: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा

0: Shat-shat naman.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11:31 हुए हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

इब्राहिम अश्क का कलाम आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली शरण सिंह की आवाजों में। मोहब्बत इस एल्बम से इसे लिया भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज में सुनते हैं ये गजल, और इसे परवाज एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।

0: प्यारा
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सैगल की आवाज़ में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सैगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सैगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और प्रदेश में आज नागपंचमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय तकनीक और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डॉक्टर सिंह

ने वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी आरएसएसडीआई के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया और मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितम्बर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। जशपुर जिले के सन्ना तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण डूमरकोना से हर्राडीपा जाने वाली सड़क बह गई है। जो कारीनाला के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बहने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस घटना से कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर आज नाग पंचमी का पर्व छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा और प्रकृति के बीच सम्मान का प्रतीक है। नाग पंचमी के दिन आज सावन के तीसरे सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। वहीं रायपुर के गुढ़ियार स्थित शुक्रवारी बाजार अखाड़े में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी तहसील मुख्यालय में डबरी नुमा गड्ढे में भरे पानी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये बच्चे खेत के पास खेल रहे थे, इसी दौरान एक बच्चा पानी से भरे गड्ढे में डूबने लगा। छोटे भाई को बचाने के लिए बच्ची भी पानी में उतर गई और डूबने से दोनों की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के शिवपुर गांव में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वो रविवार सुबह जंगल में भैंस चरा रहा था, इसी दौरान झारखंड की ओर से आए हाथी ने उस पर हमला कर दिया। वन विभाग ने परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए की सहायता दी है। देश के विभिन्न राज्यों से आए 30 पर्यटन प्रतिनिधियों ने बस्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया। 10 से 14 अगस्त तक आयोजित फेम टूर के दौरान प्रतिनिधियों ने केशकाल घाटी, चित्रकोट जलप्रपात और धुड़मा रास का भ्रमण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है और प्रदेश में आज नाग पंचमी का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौती

0: चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत यशदास और हेमलता की आवाज है।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल धयानवी के बोल, खयाम की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे एक साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहाँ आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं, देवनागरी में लिखा है ये, और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं? आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर उसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और ज़रूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी, तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म खोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की इबारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्म सम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का, अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।

रहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे।

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नज़र आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे साथी कहती हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी ज़िंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहाँ ठीक है जहाँ रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी एक और साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं, फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज। हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की

उच्च कर सकते हैं इसकी हो रही है, और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपकी लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम, और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कहते कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लिए जिए, अब अपने लिए जिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही हैं कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे साथी कहने कि लता जी की आवाज़ का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी, जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हों, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज़ तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटे सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो ज़रूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज़ की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं।

और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज़ की एक कसक मन में रह गई है, तो वो क्या है हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूं, उनके साथ खेलती हूं। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिले, पर कुछ लोग अपनी ही

बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि

ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते कोई गीत गा रहे तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वही हमारे एक और साथी कहते, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वही हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के जीते जीत। वही हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूँ। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज़ को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन मैं क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीज़ें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से,

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन की कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने

सकती है। हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं। सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए, और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिएं। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

0: पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेलर ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
3: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
2: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
4: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं।

0: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया।

0: इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल चित्रगुप्त का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: ओ वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म पेइंग गेस्ट। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।
0: निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

पी के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: सितना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेंगे इस फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
1: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
2: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
1: बिल्कुल,
2: है ना।
1: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले।
1: ये बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
2: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रहते

0: जाते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
1: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हर त्योहार हम उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को, सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
0: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए? बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम किया जाए।
1: और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज 73 भाग 2 आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की, तो आप हमें लिख कर भेजिए।
0: बिल्कुल,
1: और आप क्या करें,
0: बाहर तो आज बारिश हो रही है
1: झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ,
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला। हाँ
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू? हाँ पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं, भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है
4: कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति दो महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
2: बहू को

0: दो चार दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
1: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
1: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ,
0: अरे
2: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया।
3: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
0: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचूंगी, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान। हाय हाय,
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत।
0: हाय अरे बेटा भगवान साहब करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है देखो, हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं।
0: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम।
0: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, हाँ 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी, हाँ कह देती हूँ।
2: तेतर तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
3: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो बेटा, नहीं नहीं नहीं नहीं बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम अरे बस अंतिम समय है।

0: भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बस यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ, कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
1: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
0: बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है? भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ, वो भी चौक से। हाँ, अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा, थोड़े से केले मंगवा लेना। कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ, बड़ा दर्द है भैया।
1: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
3: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
4: हाँ हाँ, सही कहती हो। तैतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे, पर तेतर ना दे।
1: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
5: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
6: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
7: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
6: बिल्कुल।
7: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है

0: जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुनाली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है।
0: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती हैं। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
0: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
0: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद
1: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें, यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो ना, आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है, और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है।
1: बिल्कुल सही
0: बच्चे हैं, और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां

0: है मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों की पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है
1: बिल्कुल,
0: और चटपटा
1: और
0: स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है, और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है तो उसका भी मन करेगा, या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
0: कितना
1: कितना
0: अच्छा।
1: अच्छा है, तो
0: और फिर वो
1: बस
0: अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: ऐसा क्यों करते हो, बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है, और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, सफ़ेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं, और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के

0: है, सफ़ेद चीनी, नमक,
1: हाँ
0: मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है।
1: या फिर ना के बराबर होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज़्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के
1: थ्रू
0: द्वारा जा
1: मिलता
0: रहा
1: है।
0: है, तो वो बच्चे समझेंगे? उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
0: बिल्कुल सही
1: आजकल के
0: कहा।
1: बच्चे देखिए ना, कितने मोटे होते जा रहे हैं। जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को,
0: बहुत छोटे।
1: डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है। हम हार्डली, बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास
0: बिल्कुल
1: जाते
0: सुनाली, पहले तो
1: हैं।
0: डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडेटिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं
1: हाँ
0: जहाँ
1: हाँ
0: छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए।
0: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे शो सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं? जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स, खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाएं भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है,
0: बहुत अच्छी
1: कि मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स, पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ। इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहिणियों को भी आराम मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले, केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें, अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
1: वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत

0: स्वाभाविक हो गया है। रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज़ खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज़ की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में ही घर पर आ जाता है। भाई सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है। 2-3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और हाँ
0: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीज़ें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मज़ा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
0: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए

0: भाई दिल किसी पे भी आए ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस
1: मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी अगुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले, कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले, दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे, अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे। मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें

0: हल्के छेद छेद से छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग एक कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए और हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। स्वयं के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफ़ेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते
1: बिल्कुल सही
0: हैं।
1: कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना, तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ,
1: जी
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। और हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही
0: और अब
1: कहा।
0: इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।

0: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
1: हाँ,
0: इस बारे में बताइए।
1: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है, और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पिटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही
1: दो
0: कहा आपने।
1: सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं बेस्ट देते हैं, क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टुवर्ड्स प्रिवेंशन। मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो वॉट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है, या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है, या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
0: ये
1: तो
0: तो पूरा
1: वो
0: साल हो
1: हाँ
0: गया।
1: साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक
0: ACL
1: अ
0: मतलब क्या होता है?
1: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है।
0: अखबारों में हम पढ़ते हैं
1: हाँ,
0: बाकायदा।
1: स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, को ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ,
0: क्या बात है
1: जेस्टेशन पीरियड उतना तो
0: जी।
1: लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं, वैसे बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है, और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
0: बताइए ये कितनी
1: तो
0: महत्वपूर्ण बात है।
1: स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। या मैनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप
1: हाँ
0: हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
1: जरूर हैं, जरूर हैं। पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
0: यानी जब आग लगती है तभी हम
1: तभी हाँ, जब भी थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
0: जी
1: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो, तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको।
0: जी
1: एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था, तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं

0: किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता है ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं।
2: राही तू मत

0: बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी ये
1: जी
0: होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
1: महिलाओं में ज्यादा होता है?
0: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम जॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीजिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
1: कटोरी जैसा
0: कटोरी,
1: हिस्सा।
0: वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
1: जो हड्डियों को
0: तबाह करना शुरू करते हैं, तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है।
1: जी
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इम्पोर्टेंट है।
0: हिप्पोक्रेटिस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटिस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वुड बी द सेफेस्ट वे टू एंश्योर हेल्थ।
1: कितनी बड़ी बात,
0: और ये
1: उन्होंने
0: कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है,
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण
0: फूड एंड
1: स्वास्थ्य की
0: न्यूट्रिशन।
1: बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में
0: सही
1: एक्सरसाइज
0: मात्रा
1: है ना, और
0: वही
1: सही
0: कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच।
1: जी, और आज आपने जब इस कार्य

0: क्योंकि ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना। लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी
1: मुझे।

0: कार्यक्रम में बताया, तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
1: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए।
0: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
0: हाँ दोनों चीजें
1: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
0: हड्डियां
1: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
0: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी। अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
0: डेफिशिएंसी
1: होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
0: उसका पता बड़े होने पर लगता है।
1: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप। पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत ज़रूरत है। मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
0: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
1: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए।
0: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहते हैं।
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर। तेरा जिक्र है,
1: तेरा जिक्र है, करेक्ट।
0: क्या गाना है,
1: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं, एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर जिस वो पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है, और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो
0: मैकेनिज्म भी, रिलैक्सेशन
1: की जरूरत है, तब

0: सब चलता है
1: जी,
0: एक ये करना है एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
1: Okay.
0: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा।
1: तो वो एक्टिविटी चेंज हो
0: हाँ,
1: जाएंगी।
0: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं। फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग,
1: हाँ,
0: उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की।
1: ये तो
0: अगर
1: बड़ा
0: हम
1: मुश्किल
0: नियम
1: लगता
0: से
1: है।
0: चलें कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है, ये
1: ये बड़ा
0: तीन
1: मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की
0: मुश्किल ही
1: जरूरत
0: है।
1: ना पड़े।
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है। और
1: जी
0: कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है,
1: जी
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि
1: क्या बात है।
0: अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं। स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला,
1: हाँ।
0: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है।
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं,
0: एक्चुअली
1: इसीलिए तो हमने
0: जरूरत
1: आपको
0: इसलिए
1: यहाँ
0: है
1: बुलाया।
0: क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की,
1: जी
0: या तो रेस्ट ही करते रहते हैं। कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं।
1: जो दोनों एक्सट्रीम है।
0: एक्सट्रीम है।
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें, कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में। मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो। लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 ईयर्स। सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी। और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे। मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है। मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो
1: जरूरत
0: एक्चुअली
1: के लिए
0: जरूरत के लिए कर रहा था। जो
1: कर
0: अभी बढ़ गया है ये सब,
1: जी
0: इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर
1: जी
0: आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए।
1: जी
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन।
1: जी
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो।

0: तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी। तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो और एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज। उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट। सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए 1 महीना या 2 महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं 2 महीने डाइट पे हूँ, मैं 2 महीने एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD और MS नहीं मिला, 1-2 मार्क से छूट गया।
1: अरे रे।
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई, और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये। जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया 1-2 साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड है इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से, मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके

मच बिफोर दैट, मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है. मेरे क्लिनिक में आते थे. एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है. और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट.

0: उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट. तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे.
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 ईयर्स. जब भी, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी.
0: मैं कभी उसमें नहीं थी. बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और लगता है. और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है. तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स. आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर. या सो या ही इज बीन अ प्लेजर. और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है.
1: क्या बात
0: हो
1: है?
0: ही नहीं सकता है कोई भी नहीं. मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप. तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूँ, आई एम वेरी सॉरी. और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है. एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 ईयर्स दैट वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: no, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है. ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं.
1: क्या बात है. तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: मुझे
1: होती
0: कुछ
1: है?
0: अलग नहीं लगता है. नहीं, सच नहीं लगता है. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन. आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है
0: तो अच्छा
1: वाह,
0: लगता है.
1: क्या बात.
0: दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स.
1: ऑफ कोर्स
0: बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट.
1: जी, एवरीबॉडी इज, चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह ली.
0: मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है. बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है. यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम. बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए.
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का,
0: ये का
1: गाना सुनवाते हैं. नैना.

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है
0: एक्सपेंसिव हॉबी
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी,
1: उनको
0: उनको
1: अगर
0: महत्व का अंदाजा
1: उनको
0: लग जाता
1: हाँ
0: है।
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं। बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गाँव में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को।
0: जी
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा,
0: जी तो
1: सब
0: ऐसे
1: इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
1: मैं
0: वो
1: उनको
0: उसको
1: सलाह
0: नजरअंदाज
1: दे
0: कर देते
1: कि
0: हैं?
1: अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें करी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है, लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया, जो
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत
1: सर्जरी
0: ध्यान
1: के,
0: रखने की जरूरत
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: क्योंकि
1: बहुत
0: सीरियस मैटर है।
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता है,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते
1: यस,
0: हैं।
1: इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा।
0: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी
1: यस,
0: कितनी डिफिकल्ट होती है?
1: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है, एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस,
0: जी
1: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग

0: कैसे करेगी. अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग, 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है. ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए. मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है. पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है. तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के. तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है.
1: जी
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स.
1: वो तो बहुत फ्रैक्चर
0: के की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल. सो वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है.
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय
0: बहुत
1: है,
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है, और वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं. एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week used to come to clinic, and 95 he passed away. One day before that also he had requested home visit for exercise.
1: क्या बात है, इतना
0: so some people are really. और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास.
1: वाह वाह.
0: हाँ, और हमारे क्लिनिक में गाना गाते थे.
1: क्या बात.
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते.
1: क्या क्या बात है, क्या बात है. जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ भी हम,
0: वो भी 10 साल आए हमारे पास जस्ट एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज.
1: गजब, क्या बात है. चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा.
0: यस.

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो,
0: जी
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज
0: प्रॉब्लम्स।
1: एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर
0: जी
1: आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो। जिस
0: जी
1: दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है।
1: यस
0: डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से
1: थैंक यू
0: मुखातिब
1: वेरी
0: होके
1: मच,
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू।
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंड्रा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये कनकपुर, रामपुर, लुर्गी, महावीरगंज, पेंडारी, मेंढारी, कोटराही, मदनपुर, धंधापुर, उधवा कटरा, कुंदी कला, रेवतपुर, छलकू पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, बन कोम्बो, सारंगडांड, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाब, देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 89 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये जामपानी, साजापानी, बैगामार, जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधी बहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, पूंजी पथरा, तराई माल, नागदरहा, पंडरी

0: पानी कमतरा चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर कोठारी चनहाट बकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारीपानी कुनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गाना आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है धर्मवीर, आनंद बख्शी के शब्द हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का पहला तराना आप तक पहुंचा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत की रचना की थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम धर्मवीर। आइए अब सुनते हैं बहारे फिर भी आएगी, इस फिल्म का तराना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीतकार अनजान, ओपी नैयर ने धुन बनाई है।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म है दिल्ली 6। प्रसून जोशी के शब्द पर AR रहमान ने संगीत दिया है।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ों में। देव कोहली ने गीत की रचना की थी, अनु मलिक ने तर्ज बनाई थी। कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम है दस, स्वर दिया है के शान और साथी ने, विशाल और शेखर का संगीत, गीतकार हैं पंछी जॉलॉनवी।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 5:35 हुए हैं, आइए शामिल होते हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में।

मैं आपका दोस्त अभिजीत सिंह आप सभी युवा साथियों का हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना ज़्यादा सोचे समझे मान लेते हैं कि वो सच ही होंगी। कभी कोई कहता है कि ये काम कर लो जिससे भाग्य अच्छा हो जाएगा, तो हम वो मान लेते हैं। कभी कोई कहता है कि ऐसा कुछ कर लो जिससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हम बिना किसी प्रमाण के वो बात भी मान लेते हैं। तो कभी कोई सोशल मीडिया में भ्रामक संदेश देखकर हम उसको भी सच मान लेते हैं। लेकिन क्या हर सुनाई बातें सच होती हैं? क्या हर वायरल संदेश पर भरोसा करने लायक होता है? और क्या किसी बात को केवल इसलिए सही मान लेना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे लोग कर रहे हैं या मान रहे हैं? यहीं से जरूरत महसूस होती है हमें दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि हम हर बात पर शक करें या अपनी परंपराओं और मान्यताओं को छोड़ दें। इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी बात को समझने से पहले सवाल करना चाहिए, उसके पीछे का कारण जानना चाहिए, प्रमाण देखना चाहिए या फिर किसी तर्क के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी सोच का हिस्सा कैसे बनाएं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर तरह की सोच की आदत होती है जिसमें हम किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा या किसी समाज में लंबे समय से वो माना जा रहा है या वहां पे ऐसा होता आ रहा है। हम सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, इसका प्रमाण क्या है और क्या इसे जांच कर देखा गया है। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और कोई उसे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई घरेलू नुस्खा या दवा लेने को कहता है, तो हमें सबसे पहले उसका दृष्टिकोण देखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति तुरंत उस सलाह को मानने के बजाय उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करे और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह ले। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें तथ्य और अफवाह, प्रमाण और अंधविश्वास तथा तर्क और अनुमान के बीच का अंतर करना सिखाता है। दोस्तों, हमारे मन में एक बच्चा होता है, आप सब ये मानते हैं क्योंकि हमारे को हमने देखा है कि जब भी हमारा मन प्रफुल्लित होता है या खुश होता है या बहुत ज़्यादा उत्साह में होता है तो हमारे मन में एक बचपन की कुछ झलकियाँ आती हैं या फिर ऐसा मन बचपन के कुछ हरकतें करने लगता है, यू नो, बच्चों टाइप करने लगता है। तो उन्हीं बच्चों को अक्सर हमने देखा है वो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते हैं कि आसमान नीला क्यों है, सवाल पूछते हैं बारिश कैसे होती है, चांद हमारे साथ साथ क्यों चल रहा दिखाई दे रहा है। यही सवाल करने की प्रवृत्ति आगे चलकर वैज्ञानिक सोच की

बनती है। इसलिए हमें बच्चों को केवल उत्तर याद करवाने के बजाय सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बच्चा क्यों पूछता है तो उसे चुप कराने की बजाय उसके सवाल का जवाब खोजने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा सवाल ही किसी बड़ी खोज की शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम में पहले गीत का, तो चलते हैं उस गीत की तरफ जिसे गाया है जावेद अली और सताक्षी गोपालन ने, लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने। ये गाना है फिल्म जब तक है जान का।

0: Action!
1: आज हमारे घर की शान और सबकी जान समर्थ का जन्मदिन है। समर्थ, तुम्हारे होने से हमारे परिवार में हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाता है। मम्मी रेवा कुलश्रेष्ठ, पापा सुधांशु कुलश्रेष्ठ और बहन सानवी कुलश्रेष्ठ एवं समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार की तरफ से तुम्हें ढेरों दुआएं और प्यार। तुम जो भी सपना देखो वो सब सच हो। हैप्पी बर्थडे समर्थ।
2: नमस्कार, लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान संबंधी आवश्यक जानकारी। मित्रों, साइबर अपराधी आम लोगों से रकम ऐंठने नित नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और कई बार भोले भाले लोग इस संबंध में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में उनके कुचक्र में उलझकर अपना बहुत कुछ गंवा बैठते हैं। यदि किसी भी अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर कॉल आता है और वह अपने आप को पुलिस, CBI, ED या बैंक कर्मचारी अथवा न्यायालय का मजिस्ट्रेट बताता है तथा आपके विरुद्ध FIR दर्ज हो चुकी है, आपकी गिरफ्तारी होनी है जैसी धमकी देता है या इसके एवज में बड़ी रकम की मांग करता है, तब ऐसे झूठे फोन कॉल पर विश्वास न करें, न ही

0: डरें। ध्यान रहे, उपरोक्त विभाग किसी को ऐसे फोन नहीं करता है। ये साइबर अपराधी होते हैं जो आमजनों को डरा धमका कर पैसे वसूल कर भाग जाते हैं, इसलिए सावधान रहें। इस प्रकार के फोन कॉल आने पर फौरन डायल 1930 या पुलिस को सूचित करें। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
1: दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के क्रम प्रकृति और पर्यावरण की, जिसमें बात हुई है प्रतीक्षा तिवारी और ओम तिवारी से। लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा क्रम, और आज का हमारा क्रम है प्रकृति के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि प्रकृति हमें जीवन क्यों देती है और हमें कैसे उस जीवन को संवारना होता है और कैसे हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और हमारा कर्तव्य प्रकृति के प्रति क्या बनता है। तो दोस्तों, ये सोचिए कि क्या प्रकृति या पर्यावरण संरक्षण का मतलब केवल पेड़ लगाना या किसी विशेष दिन पर्यावरण दिवस मनाना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल। नल को बेवजह खुला छोड़ना हो, या कमरे से निकलते समय पंखा या लाइट चालू, बाजार जाते समय प्लास्टिक की थैली लेना हो, या घर कचरे को बिना अलग किए फेंक देना। ये छोटी सी दिखाई देने वाली बातें वास्तव में पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। अगर हम अपनी आदतें थोड़ी सी बदलें तो प्रकृति के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। तो आज के हमारे क्रम का विषय है पर्यावरण हितैषी हमारे का। आज हम जानेंगे कि आखिर वे कौन सी छोटी छोटे कदम है जिन्हें अपना कर हम अपने घर, अपने शहर और अपने पूरे पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते। और इसीलिए हमारे साथ हैं आज विशेष मेहमान। तो आइए, चलिए सबसे पहले उनसे जानते हैं उनका परिचय।
3: नमस्कार, मेरा नाम है ओम तिवारी और मैं को फाउंडर हूँ क्रीम बिलासपुर का। मेरी एक संस्था है जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है, उन्हें संरक्षित करने के लिए काम करती है, उसे उनकी पर्यावरण की साफ सफाई के लिए काम करती है।
4: नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक्षा तिवारी और हम क्लीन बिलासपुर टीम से हैं। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करते हैं, हमारी टीम मिलकर पिछले 5-6 वर्षों से इसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान, पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें हम लोग तालाबों को संरक्षित करने का अपना प्रयास कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। और पास में जो पार्क हैं, इन सब पे जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर प्रॉपर पानी डालना, उनकी देख रेख करना, ये हमारी संस्था और हमारी टीम मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं।
2: ओम और प्रतीक्षा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवा जगत कार्यक्रम में। आप लोग सबसे पहले हमारे श्रोता साथियों को ये बताइए कि पर्यावरण हितैषी कार्य से हमारा क्या तात्पर्य हो सकता है।
4: देखिए, पर्यावरण हितैषी कार्य का सीधा सा अर्थ है ऐसा कार्य और ऐसी जीवन शैली अपनाना जिससे हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसमें केवल पेड़ लगाना ही शामिल नहीं है, बल्कि पानी और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे को सही तरीके से अलग करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और अधिक से अधिक उसको रीयूज करना, और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना भी पर्यावरण हितैषी के कार्य में ही आता है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन या एक अभियान की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा हुआ विषय है। जब करोड़ों लोग अपने छोटे छोटे व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो उसका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है।
2: जी, तो आज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी आदतें हैं, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे युवा साथियों को ये बताइए कि कौन कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से पर्यावरण को कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी।
4: हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिसको हम लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन उनका पर्यावरण पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए, जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बार बार खरीदना, पानी को बेवजह बहने देना, कमरे या घर से निकलते टाइम हम पंखा लाइट ये सब बंद करना भूल जाते हैं, उनको चालू छोड़ देते हैं, और छोटी भी दूरी के लिए हमको जाना है कहीं तो हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कचरे को गीले सूखे रूप में अलग अलग ना करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण को नुकसान केवल बड़े उद्योगों या बड़े प्रदूषण स्रोत से नहीं होता, बल्कि हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं उसमें योगदान देती हैं। इसलिए शुरुआत हमें अपने घर से और अपने व्यवहार से ही करनी चाहिए।
2: जी, तो क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बड़े अभियानों से ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे छोटे छोटे दैनिक प्रयास हो सकते हैं?
4: जी बिल्कुल, बड़े अभियान जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सफलता तभी होती है जब वह जागरूकता हमारे

0: जीवन का हिस्सा बनती है। उदाहरण के लिए अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाते हैं लेकिन उसके बाद उसकी कोई देखभाल नहीं करता तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति रोज पानी की बर्बादी को रोकता है, बाजार जाते समय कपड़े का बैग लेकर जाता है, प्लास्टिक से बचता है और घर में कचरे को अलग अलग करता है, बिजली की बचत करता है, तो यह प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगी कि बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं बल्कि लाखों लोगों के छोटे छोटे सही कदमों से आता
1: है। ओम, जैसे कि आप को-फाउंडर हैं क्लीन बिलासपुर के, तो आपके इस साल किए गए जो भी प्रयास हैं पर्यावरण को बचाने के लिए या हमारे सुंदर से बिलासपुर की प्रकृति को बचाने के लिए, उसके बारे में आप अगर हमारे श्रोता साथियों को कुछ बता पाए।
2: जी बिल्कुल, हमारी जो क्लीन बिलासपुर की टीम है वो सारे के सारे मिलकर, जैसे हमने अभी अभी स्टार्टिंग में रिवर व्यू से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, रिवर व्यू को पूरा क्लीन करना, वहाँ पर जो भी लोग घूमने आते हैं, पर्यावरण को देखने आते हैं, अगर हमारी अर्पा मैया को देखने आते हैं तो वहाँ पर उन लोग कचरा गंदगी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, तो उसको साफ करना, वहाँ पर जितने भी कूड़ा कचरा प्लास्टिक ये सब चीजें जो फेंक के हमारी अर्पा मैया को दूषित करते हैं, तो उसको सभी को साफ करना, पानी को स्वच्छ करना, ताकि वहाँ पर जो आसपास के जो जानवर हैं वो जब वो उस पानी को आके पीते हैं तो उनको कम से कम शुद्धता मिले, वो हमारा पहला प्रयास रहता है। दूसरा हमारा था कि अभी अभी बरसात के मौसम से पहले हमने सरकंडा एरिया और सकरी का जो एरिया है वहाँ जितने भी अटल आवास उनको हमने सफाई करवाया, ताकि जो भी बरसात में जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं और जो कि हम जैसे जानते हैं कि वो एरिया में ज्यादा गंदगी फैलती है, तो उस एरिया को साफ करना ताकि आगे जाके बरसात के मौसम में वहाँ के लोग स्वस्थ रहें, इसलिए हमने बरसात के मौसम से पहले वहाँ का सफाई करवाए थे। और अभी अभी पर्यावरण को देखते हुए हमने अभी जतिया तालाब को पूरा स्वच्छ करवाया था, ताकि वहाँ पर हमने जो पेड़ लगाया था पेड़ों को संरक्षित किया था और जाके वहाँ पर उसको वहाँ की जो मवेशी है जो गाय वाय है वो खा मत पै करके हमने उस पर जालीदार भी लगाया था, ताकि उससे भी उनको सुरक्षा मिल सके उन पौधों को। और साथ में हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें हमने अपने बिलासपुर के लिए, ताकि वो हमारा बिलासपुर स्वच्छ रहे। अभी अभी हाल ही में हमने जो नेहरू चौक में जो चौक की जो सफाई होती है जहाँ नेकी की दीवार है उसको भी हमने अभी हाल ही में हमारी टीम ने जाकर वहाँ पर जितने भी जो कपड़े जो रखे रहते थे जो फेंकाए रहते थे तो उसको संरक्षित करके एक जगह अच्छे से बढ़िया से उसको मोड़ के हमने एक जगह रखा, कि वो भी एक सिस्टमेटिक वे में दिखे। लोग वहाँ पर आते जाते हैं, जो भी बाहर से आते हैं वो नेहरू चौकी पहले आते हैं। ये सब भी देखते हुए हमने अपने बिलासपुर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम अभी भी मेहनत कर रही है, लगातार कर रही है। हर दिन सुबह आपके उठने से पहले हमारी टीम तैयार रहती है और साथ साथ में हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते भी हैं, जितने भी कॉलेज के जो स्टूडेंट रहते हैं जो NSS में जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी हमारी मदद करने के लिए आते हैं। तो ये सब
1: ओम, जैसा कि मैं आपके इन ड्राइव्स को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ, आपकी टीम को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि जैसे आप लोग दिवाली के अगले दिन भी निकलते हैं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन बहुत कचरा होता है शहरों में, गली गलियों में फटाके के कचरे मिलते हैं हमको। साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब सप्तमी का दिन होता है, दुर्गा सप्तमी का दिन होता है शारदीय नवरात्रि में, और पद यात्रा होती है कोनी से लेकर रतनपुर तक, तो जनरली सरकंडा से लेके जो मामाया चौक है हमारा वहां से लेके कोनी तक का हिस्सा जनरली मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कचरे से भरा होता है, क्योंकि प्रसाद वितरण होता है और प्रसाद वितरण के बाद जो श्रद्धालुगण होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो कचरा होता है वो सड़कों पर पड़ा होता है। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा फेस्टिवल जिसमें यात्रा निकलती है या फिर कोई ऐसा झांकी निकलती है उसके बाद भी आपकी टीम जनरली शहरों पर दिखती है हमें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम और आपका क्या मोटिवेशन था अपने शहर को लेकर कि आप इन सारे मेजर जो एक्टिविटीज हैं हमारे शहर के उसके बाद आपकी टीम निकलती है और क्लीन बिलासपुर का एक सपना लेकर उसको बहुत शिद्दत से पूरा भी करने की कोशिश करती है।
2: जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा कि हमारी टीम ये सब सारे कचरों को देखे, तो हमारा मेन मोटिव ये था कि हम जब देखते थे कि हमारा बिलासपुर के लोग जो हैं, मतलब सारे तो नहीं बोल सकता मैंने, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं, कार से जाते रहेंगे तो कचरा फेंक देंगे या फिर खाएंगे कुछ भंडारे में, जैसे आपने कहा कि नवरात्रि के टाइम में भंडारा हर जगह होता है, पूरा बिलासपुर में होता है, तो जो भंडारा का कचरा उन्होंने फेंक देते हैं जानबूझ के खा के आधा खा के, गाय खा लेगी या कुत्ता खा लेगा, तो हमारी टीम ये सब हम जब पहले देखते थे तो हमने एक टीम बनाया, हमने ये सोच के ही टीम बनाया था कि हमें अपने बिलासपुर को साफ रखना है, जिसकी कि हमें पूरी मदद नगर निगम से मिलती है, जो हमारे नगर निगम की भी टीम है साथ में हमारी जो पर्सनल टीम है वो पूरा शहर में फैलती है और जा जाके कचरों को उठाती है। सुबह 5 बजे से हमारी टीम रेडी रहती है और खास करके नवरात्रि दिवाली पर्व में, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है हमारे सभी भारतवासियों के लिए, तो उस ऐसे पर्व में कचरा फैलना और उस कचरे को तुरंत ही उठाकर साफ करना जो कि अगले दिन

0: बाकी लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं, लेकिन हमारी टीम निकलती है तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हमें अपने बिलासपुर को कम से कम साफ रखना है, और जितना हो सके हमसे जितना हो सके हम अपना प्रयास पूरा करते हैं ताकि बिलासपुर स्वच्छ स्वच्छ दिखे, स्वस्थ दिखे। स्वच्छता ही स्वस्थता की पहचान है, ये हमारा मेन मोटिव रहता है, हमारा जो क्लीन बिलासपुर है उसका और हमारी टीम का भी।
1: जैसा कि अभी हम जान रहे थे कि जैसे कचरा हमारे शहरों में होता है, उनको साफ करने की जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग करते हैं, तो मेरा ये जानना था कि पानी और बिजली बचाने को हम पर्यावरण संरक्षण से किस तरह से जोड़ कर देख सकते हैं।
2: पानी और बिजली की बचत सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। पानी हमें बहुत आसानी से उपलब्ध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में स्वच्छ पानी एक सीमित और बेहतर मूल्यवान प्रकृति का संसाधन है। इसलिए नल को अनावश्यक रूप से खुला छोड़ना, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना या पानी की लीकेज को नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसी तरह बिजली बचाने का मतलब केवल बिजली का बिल कम करना नहीं है, बिजली के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग होता है। इसलिए जब हम अनावश्यक पंखे, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करते हैं तो हम ऊर्जा की बचत करते हैं। ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करते हैं। इसलिए बिजली बचाइए, पानी बचाइए, और केवल आर्थिक बचत का संदेश नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संदेश है।
1: अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को या युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे कोई छोटा सा संदेश हो जिससे वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और व्यवहार में भी अपने उतार पाए, ऐसा कोई संदेश?
0: जी, मैं अपने सभी श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण कोई हमसे अलग चीज नहीं है, हम स्वयं पर्यावरण का हिस्सा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस मिट्टी से हमारा अन्न पैदा होता है और जिन पेड़ पौधों से हमें जीवनदायी ऑक्सीजन मिलती है, इन सभी का संरक्षण वास्तव में अपने जीवन का संरक्षण है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार, प्रशासन या किसी संस्था की नहीं है, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इसलिए आज से हम छोटी सी शुरुआत करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्लास्टिक कम करें, कचरा सही जगह डालें, पेड़ लगाएं और लगाए हुए पेड़ की देखभाल करें। याद रखिए, हमें प्रकृति अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, यही हमारा सबसे बड़ा पर्यावरण हितैषी कार्य हो।
1: तो साथियों, आज की बातचीत में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि ओम ने हमें बताया, यह हम सब की एक साझा जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को समझना हमारा एक कर्तव्य है। हमें प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, कभी पानी की बर्बादी रोक सकते हैं तो कभी बिजली बचा सकते हैं, कभी प्लास्टिक की थैली के बजाय कपड़ों का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, कचरे को सही तरीके से अलग अलग या फिर एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी लेना, ये सभी छोटे कदम है दोस्तों पर्यावरण के लिए, जो एक बड़ा योगदान बन सकते हैं। इसी संदेश के साथ आज का ये क्रम यही समाप्त होता है।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम प्रकृति और पर्यावरण, जिसमें हमारी बात हो रही थी प्रतीक्षा तिवारी और ओम तिवारी से। साथियों, वक्त हो चला है एक और गाने का, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने और लिखा है कौशल मुनीर ने और संगीत से सजाया है सोहेल सेन ने। ये गाना है फिल्म महाराज का।

0: आज हमारे घर की शान और सबकी जान समर्थ का जन्मदिन है। समर्थ, तुम्हारे होने से हमारे परिवार में हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाता है। मम्मी रेवा कुलश्रेष्ठ, पापा सुधांशु कुलश्रेष्ठ और बहन सानवी कुलश्रेष्ठ एवं समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार की तरफ से तुम्हें ढेरों दुआएं और प्यार। तुम जो भी सपना देखो वो सब सच हो। हैप्पी बर्थडे समर्थ।
1: तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रकृति पर्यावरण कैसे बचाया जा सकता है, वैसे ही अगर हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए केवल भावनात्मक बातें काफ़ी नहीं हैं। हमें वैज्ञानिक तथ्यों को समझना होगा और उसी आधार पर समाधान तलाशने होंगे। उदाहरण के लिए, पेड़ लगाना बहुत अच्छी पहल है, लेकिन साथ ही साथ हमें समझना भी ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार कौन से पौधे लगाए जाएं, उन्हें कितना पानी चाहिए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। यानी पर्यावरण संरक्षण में भी भावना के साथ विज्ञान का जुड़ाव ज़रूरी है। दोस्तों, आज के युवा शिक्षा, रोज़गार, तकनीक और करियर की दुनिया में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें समस्या को सही तरीके से समझने, तथ्यों का विश्लेषण करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। चाहे विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू कर रहा हो या कोई नई तकनीक सीख रहा हो, हर जगह सोच और सही जानकारी उसके लिए उपयोगी साबित होती है। वैज्ञानिक सोच हमें यह भी सिखाती है कि गलत साबित होने पर अपनी राय बदलना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की क्षमता कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब केवल विज्ञान की किताबें पढ़ना या प्रयोगशाला में प्रयोग करना नहीं, यह हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने का तरीका है। जब हम किसी बात को आंख बंद करके मानने के बजाय सवाल करते हैं, जब हम अफवाहों के बजाय तथ्य तलाशते हैं और जब हम अनुमान के बजाय प्रमाण को महत्व देते हैं, तभी हम वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, सवाल करेंगे, तथ्य तलाशेंगे, अफवाहों से बचेंगे और तर्क एवं प्रमाण के आधार पर अपनी सोच बनाएंगे। क्योंकि एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति केवल अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि वह एक जागरूक समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देता है। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त और होस्ट अभिजीत सिंह को। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार।

अभी युवा जगत का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

शाम 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं श्रोताओं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर और इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:00। रजनीगंधा का प्रसारण समय होता है 8:15 पर। ग्राम सभा में बेरा के गोट के तहत विषय होगा वर्षा के बाद मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती। आज श्रीमती निशा चंदेल ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी मस्तूरी जिला बिलासपुर से भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा पौध उत्पादन वितरण एवं पौधरोपण की जानकारी। रात 8:00 सुनिएगा सुगम संगीत, कलाकार होंगी सपना अवस्थी। अब कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें श्रोताओं। कल 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात। विषय होगा ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व किसानों के लिए जानकारी चिंतन। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं कल सुबह 6:45 पर। कल का विषय होगा आस्था और अनास्था। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया आप सुनिएगा सुबह 8:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर का प्रसारण समय होगा दिन के 10:00। ये दोनों कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम नैतरानी का प्रसारण समय होगा 10:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं कल 11:00। शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कल शाम 5:05 पर कार्यक्रम भुइया के बोली का प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय संघर्षों की भूमिका ये विषय होगा कल की वार्ता का। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। महिला सभा प्रसारित किया जाएगा 5:35 पर। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा तस्वीरों में जिंदगी और क्रम में सुनिएगा कौशल विकास, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें गीत सुने इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं कल शाम 6:20 पर और शाम 7:00। 7:30 पर किसानवाणी का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 8:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा और 8:00 सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। कल कलाकार होंगी सुनीता राव। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नवा राष्ट्रीय टीम के घोषणा कर दे गए है। छत्तीसगढ़ ले सांसद रूप कुमारी चौधरी ला, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक महस्केला सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण ला प्रभावी ढंग ले लागू करे खातिर प्रदेश में 20 अगस्त के हुवैया ग्राम सभा में महत्वपूर्ण विषय में करे जाही गोट बात। और आज नाग पंचमी के पर्व प्रदेश में भक्ति और उत्साह के संग मनाए जाते, उन्हें प्रदेश भर के शिव मंदिर मन में हुआ थे विशेष पूजा पाठ। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय जनता पार्टी के नवा राष्ट्रीय टीम के घोषणा कर दे गए है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पार्टी के नवा राष्ट्रीय पदाधिकारी मन के नाव के सूची जारी करीन। नवा सूची के मुताबिक महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ला महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करे गए है। उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्केला सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए है। राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव के पद्मा पार्टी के बड़का नेता मन ला नियुक्त करे गए है। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ला पार्टी के कोषाध्यक्ष और बीएल संतोष ला संगठनात्मक महासचिव बनाए गए है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ ला दो महत्ता के जिम्मेवारी मिले मा केंद्रीय नेतृत्व के आभार जतैन है। उमन रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्केला अपन शुभकामना दिन है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जिला प्रभावी ढंग ले लागू करे खातिर प्रदेश में 20 अगस्त के हुवैया ग्राम सभा में महत्वपूर्ण विषय में गोट बात करे जाही। ये दौरान गांव के लोगन ला योजना के संबंध में जानकारी दे के संगे संग चालू वित्तीय वर्ष में योजना में हुवैया काम के अनुमोदन घलो करे जाही। ग्राम सभा में गाँव के लोगन ले गाँव के जरूरत प्राथमिकता और संभावित विकास काम के संबंध में सुझाव ले जाही। एकर बर अवैया 2 अक्टूबर ले शुरू होवैया विकसित ग्राम पंचायत योजना मा ये सुझाव मा प्रभावी ढंग ले गोट बात होही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिला के बगिया मा रेशम से रोशन जसपुर योजना के शुभारंभ करीन। ये योजना मा जिला मा टसर और मलबरी रेशम कीट पालन ला बढ़ावा दे के प्रयास करे जाही। खबर के मुताबिक बछर 2025-26 मा जसपुर जिला टसर कोसा उत्पादन मा छत्तीसगढ़ मा अव्वल स्थान मा रहे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिला के दौरा के बेरा आज अपन गृह ग्राम बगिया मा खेत पहुंचीन और पारंपरिक रूप ले बैला के जोड़ी संग हल चला के बियासी करीन। मुख्यमंत्री है कहीन कि ओमन खुद किसान परिवार ले आते और ननपन ले ही खेती किसानी ला देखे हैं जाने हैं। श्री साय है कहीन कि आधुनिकता के दौर में घलो अपन परम्परा और जड़ ले जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसान खेत में सिर्फ फसल नहीं उगावे भलुक अपन मेहनत ले समाज आज के जीवन और प्रदेश के अर्थव्यवस्था ला मजबूती दे थे। कोंडागांव में हीलर हर्बल गार्डन योजना के शुभारंभ करे गए है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम है योजना के शुरुआत करीन। ये मौका मा 48 जिन वैद्य मल्ला अपन बाड़ी मा औषधि पौधा लगाए बर पहली किस्त के मंजूरी पत्र देगी। योजना मा वैद्य मल्ला आर्थिक और तकनीकी मदद मिली। सम्मेलन मा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वन औषधि के संरक्षण ऊपर गुड बात हुई। रायपुर में राजभाषा आयोग के कार्यालय स्थापना दिवस में राखे गए कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और भाषा सेवी मन के सम्मान करेगी। ये मौका में राजभाषा आयोग कोतिले प्रकाशित 26 चिन्ह पुस्तक के विमोचन हुई। प्रदेश भर ले आए साहित्यकार और विद्वान मन छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण संवर्धन और विकास ऊपर अपन विचार राखीन। प्रोफेसर राजन यादव है भाषा साहित्य और संस्कृति के संबंध में बतात छत्तीसगढ़ी भाखा ला समृद्ध करे के जरूरत बताइन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है UGC नेट परीक्षा के 3 विषय अंग्रेजी

वाणिज्य और समाज शास्त्र पर फिर ले परीक्षा कराए के घोषणा करी नहीं। ये तीनों विषय में पेपर में कई ठीन गलती के शिकायत मिले के बाद ये फैसला ले गए है। NTA के मुताबिक फेल ले होवैया अंग्रेजी और वाणिज्य विषय के परीक्षा अवैया 9 सितम्बर के और समाज शास्त्र विषय के परीक्षा 10 सितम्बर के होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। सावन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में आज नाग पंचमी के पर्व प्रदेश में भक्ति और उत्साह के संग मनाए जाते। ये पर्व नाग देवता के पूजा और प्रकृति के बीच सम्मान के प्रतीक होते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जसपुर जिला के अपन गृह ग्राम बगिया में श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुँच के पूजा पाठ करीन। मुख्यमंत्री है भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करके प्रदेशवासी मन में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के संग प्रदेश के सरलग आगू बाढ़े के मानता मानी। मैनी नंदिया के तट तीर के महादेव मंदिर में 1,11,101 पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा के 3 दिवसीय विशेष पूजा आज ले शुरू हुई। 19 अगस्त के पार्थिव शिवलिंग पूजन और पूर्णाहुति के संग सिराही। उन्हें शक्ति जिला के जय जयपुर विकास खंड में कैथा गांव के बिरितिया बाबा धाम में नाग पंचमी के मौका में श्रद्धालु मन के भीड़ देखेगी। यहाँ मेला घलू भरा थे। ऐसने जांजगीर चांपा जिला में अकलतला क्षेत्र के दलहा पहाड़ में नाग पंचमी के मेला लगे है। ये पहाड़ के नीचे मुनि आश्रम और सूर्यकुंड में भिनसरा ले लोगन पूजा पाठ करत है। आज सावन महीना के तीसरा सोमवार में जम्मू शिवालय मंदिर मन में सुघर सजावट करे गए है। उन्हें श्रद्धालु मन के भीड़ देखे जा सकत है। इति बिहिनिया ले ही बड़ संख्या में मंदिर पहुँचे कांवड़िया मन भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करके मानता मानिन है। रायगढ़ जिला के PM श्री सेजेस धर्म जयगढ़ के कक्षा 11वीं के छात्रा अर्चना एकला नवाचार इको ब्रिक बैंक के राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए है। अर्चना है प्लास्टिक कचरा ला संसाधन के रूप में बौर के ओखर ले फर्नीचर समेत कतकुन जिनिस बनाए के उद्यम करे हैं। अर्चना के ये उद्यम पढ़ैया लैका मन ला पर्यावरण सहेजे और नवाचार पर प्रेरित करत है। रायपुर के टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वंदे मातरम के गौरवशाली यात्रा में आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी पढ़ैया लैका और लोगन मन ला आकर्षित करत है। लैका मन प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानी मन के संघर्ष और बलिदान ले जुड़े छाया चित्र और दस्तावेज देखिन। पढ़ैया लैका मन ला छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा और जन कल्याणकारी योजना के जानकारी देगी। ये प्रदर्शनी 21 अगस्त तक बिहनिया 10:30 बजे ले रतिया 8 बजे तक लोगन बार खुला रही। गोरिल्ला पिंडरा मरवाही जिला में काली ले 26वां राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। 4 दिवसीय यह प्रतियोगिता के शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करही। कार्यक्रम की अगुवाई मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची करही। उन्हें सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत और विधायक अटल श्रीवास्तव माई पहुना के रूप में मौजूद रही। 21 अगस्त तक चलैया ये प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग ले 14 ले 19 बच्चर आयु वर्ग के करीबन 540 खिलाड़ी भाग ले ही। एमा जिम्नास्टिक के मुकाबला गोरिल्ला में खेले जाही। उन्हें क्रिकेट ताइक्वांडो और कबड्डी के मुकाबला पेंड्रा में हुई। देश के आने आने राज्य ले आए 30 पर्यटन प्रतिनिधि मन बस्तर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत ला जानिन। 5-10 ले 14 अगस्त तक राखे गए फैम टूर के दौरान प्रतिनिधि मन केसकाल घाटी चित्रकोट जलप्रपात और घुड़मा रास के दौरा करें। चित्रकोट के सुघरई और घुड़मा रास में जनजाति जीवन और प्रकृति के मेल है सबो झलना प्रभावित करीस। प्रतिनिधि मन छत्तीसगढ़ ला पर्यटन के अपार संभावना वाला प्रदेश बतैन है। और अब जानन मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 2 दिन के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ एक जगह में भारी वर्षा के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बतैन कि एक अवदाब के क्षेत्र बने हैं जेखर से ती राज्य में मानसून के गतिविधि बढ़ी फिर परन दिन ले 19 तारीख के बाद वर्षा में कमी आए के संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। भारतीय जनता पार्टी के नवा राष्ट्रीय टीम के घोषणा कर दे गए है। छत्तीसगढ़ ले सांसद रूप कुमारी चौधरी ला महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक महस्केला सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण ला प्रभावी ढंग ले लागू करे खातिर प्रदेश में 20 अगस्त के हुवैया ग्राम सभा में महत्वपूर्ण विषय में करे जाही गोट बात।

0: अउ आज नागपंचमी के पर्व प्रदेश में भक्ति और उत्साह के संग मनाए जाते, उन्हें प्रदेश भर के शिव मंदिर मन में होवा थे विशेष पूजा पाठ। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है घर, शब्द हैं गुलजार के आरडी बर्मन का संगीत, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम हैं राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर यूपी से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुजरात से आप हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश और उनके साथी, भिलाई नगर से हैं अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, श्याम कुंवर, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ज़िला कवर्धा से आप हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, ललिमा, खुशांत साहू, निशांत साहू, झारखंड गिरिडीह से आप हैं मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद मिफ्रा नवाज, चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, लूत्रा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श अतिका, बालोद से आप हैं देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, सरगांव बाजार से आप हैं नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बागबहरा भद्रसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन, माही सेन, बरकाना से अफजाल, ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान बोड़खे, पलेरा टीकमगढ़ से हैं विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनामी, सोनल विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही मेहराज जहां, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप पंथादी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम थांदी, वामिका और वाणी, मुंबई से आप हैं आदिबा फातिमा, नसरीन अंसारी, सबा अंसारी और आलिया, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार ढिंगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से आप हैं राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलजार के बोल और आरडी बर्मन का संगीत।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

पतिता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल पर शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी जिनके ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं उनके नाम हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और

तन मैं गज भी। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, मगर लोड सौंगा से फनीश कुमार, चंदन सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार, चंदन पोड़ी भाटा, अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्व और हिमाक्ष, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री का ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, जपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना चैतन्य, मेघा मस्किन, जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। हाथी मेरे साथी इस फिल्म का गीत अब आप सुनिएगा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी हैं सीतामणि बिहार से, मुसरत जहानाज, तलअत फरहत, रिफअत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कलिंद्री लहरे, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाण, चंद्रकला राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरव, शाइना और इनके साथी आप सभी हैं पंजाब से, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और इनके साथी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से आप हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया माधुरी, किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कालरी से आप हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के।
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: इन संदेशों के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है। इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:45 होने को हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक महस्के को सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। मुख्यमंत्री ने आज जशपुर जिले के प्रवास के दौरान रेशम से रोशन जशपुर योजना का किया शुभारंभ। नागपंचमी का पर्व प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर लगाए गए हैं मेले। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ को भी प्रतिनिधित्व मिला है। नई सूची के अनुसार महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के को सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महासचिव के पदों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया है। वहीं बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ को दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के को शुभकामनाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश में 20 अगस्त को होने वाले ग्राम सभाओं में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी देने के अलावा चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत होने वाले कार्यों का अनुमोदन भी किया जाएगा। ग्राम सभा में ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संभावित

काजकानों के बारे में सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित ग्राम पंचायत योजना में इन सुझावों और ग्राम सभा की अनुशंसाओं का प्रभावी उपयोग करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया में रेशम से रोशन जशपुर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जिले में टसर और मलबरी रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में जशपुर जिला टसर कोसा उत्पादन में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर जिले के प्रवास के दौरान आज अपने गृहग्राम बगिया में खेत पर पहुंचकर पारंपरिक रूप से हल चलाकर बियासी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और बचपन से खेती किसानी को बहुत करीब से देखा है और अनुभव किया है। श्री साय ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए के अनुसार दोबारा होने वाले अंग्रेजी और वाणिज्य विषय की परीक्षा आगामी 9 सितंबर को तथा समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। रायपुर में राजभाषा आयोग के कार्यालय स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों और भाषा सेवियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित 26 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। प्रदेश भर से आए साहित्यकारों और विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजन यादव ने भाषा, साहित्य और संस्कृति के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने की आवश्यकता बताई। कोंडागांव में हिलर हर्बल गार्डन योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर 48 वैद्यों को अपनी बाड़ी में औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने के लिए प्रथम किस्त का स्वीकृति पत्र दिया गया। योजना के तहत वैद्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलेगी। सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वनौषधि के संरक्षण पर चर्चा हुई। रायगढ़ जिले की पीएमसी सेजेस धर्मजयगढ़ की कक्षा 11वीं की छात्रा अर्चना एक्का के नवाचार इको ब्रिक बैंक का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। अर्चना ने प्लास्टिक कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर उससे फर्नीचर सहित उपयोगी वस्तुएं बनाने की पहल की है। अर्चना की यह पहल विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के लिए प्रेरित कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कल से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। 4 दिवसीय इस स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची करेंगे। वहीं सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत और विधायक अटल श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों के 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्पर्धा में जिम्नास्टिक के मुकाबले गौरेला में खेले जाएंगे, वहीं क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी के मुकाबले पिंडरा में आयोजित किए जाएंगे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर आज नागपंचमी का पर्व प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व नागदेवता की पूजा और प्रकृति के बीच सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले स्थित अपने गृहग्राम बगिया में श्री फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं सक्ती जिले के जयजयपुर विकासखंड में कैथा गांव स्थित प्रसिद्ध बिरितिया बाबा धाम में भी नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस अवसर पर मेला भी लगाया गया है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा क्षेत्र के दल्हा पहाड़ में भी नागपंचमी पर मेला लगाया गया है। दल्हा पहाड़ के नीचे स्थित मुनि आश्रम और सूर्यकुंड में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। इस अवसर पर राज्य के सभी शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ यात्रियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया।
देश के विभिन्न राज्यों से आए 30 पर्यटन प्रतिनिधियों ने बस्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया। बीते 10 से 14 अगस्त तक आयोजित फैम टूर के दौरान प्रतिनिधियों ने केशकाल घाटी, चित्रकूट जलप्रपात और धुर्मा रास का भ्रमण किया। चित्रकूट की भव्यता और धुर्मा रास में जनजातीय

0: जीवन तथा प्रकृति के संगम से ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ को पर्यटन की अपार संभावना वाला प्रदेश बताया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि एक अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है, इसके असर से राज्य में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि 19 अगस्त के बाद से बारिश में कमी आने की संभावना है।
1: एक अवदाब क्षेत्र डिप्रेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल और इससे लगे हुए पश्चिम बंगाल उत्तर उड़ीसा का ऊपर स्थित है। उत्तर छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में इसके ज्यादा असर होने की चांसेस है। आज का स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया है बिलासपुर संभाग में एक दो स्थानों पर, और सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अति भारी वर्षा के लिए।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश भर में 15 अगस्त से शुरू हुए साइबर जागृति अभियान के तहत कोंडागांव जिले में भी साइबर क्राइम से बचाव आधारित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पुलिस विभाग की ओर से सोशल मीडिया के जरिए साइबर क्राइम से बचाव के संदेश वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। रायपुर के टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वंदे मातरम की गौरवशाली यात्रा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी विद्यार्थियों और नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह प्रदर्शनी 21 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। बलरामपुर जिले के कुसमित थाना क्षेत्र के अमरपुर के बड़का जोभी में तालाब में डूबने से दंपति की मौत हो गई है। बताया जाता है कि जब पति तालाब में डूब रहा था तो उसे बचाने के लिए पत्नी ने भी छलांग लगा दी, जिससे दोनों की ही जान चली गई। और कोंडागांव के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 20 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाले इस मेले में निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 63 रिक्त पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक महस्के को सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। मुख्यमंत्री ने आज जशपुर जिले के प्रवास के दौरान रेशम से रोशन जशपुर योजना का किया शुभारंभ। नागपंचमी का पर्व प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर लगाए गए हैं मेले। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

आइए सुनते हैं झुक गया आसमान फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, हसरत जयपुरी के शब्द हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम, टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ ऋचा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और आदिबा, दुर्ग से आप हैं कामड़े सी आर, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और उनके साथी, महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रितेश संघई, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजनी, निवृत्ति आडोकार, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत और क्रिस्टी पटवा, पंजाब से आप हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। अगला गीत आइए सुनते हैं इन श्रोता साथियों की फरमाइश पर। नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश। पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दत्रेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल तमश खत्री, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। जिला जालौन उत्तर प्रदेश पंजौनिया से आप हैं सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक, अलौकिक। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र। यवतमाल से यशोधरा, श्राव्या और उनके साथी। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू,

नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार और इनके साथी। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। श्रीरामपुर से आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं गजनी फिल्म का ये गीत। जावेद अली और सोनू निगम ने इसे गाया है, प्रसून जोशी के शब्द हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। अमीर खुसरो के शब्द हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश आशीष देवांगन, रवि शनि रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन ने, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति ने भी इसी गीत को पसंद किया है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से आप हैं रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग। बरेली कैंट चनेहटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन वर्मा, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा। खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विभूति, अंशु विनोद बबली और प्रियांशु साहू। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास्कर, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, पद्मिनी नीरज रावत, शुभम। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया, आरव खुराना, एस के पप्पी। मोताला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी राबिया और इनके साथी। दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये तराना।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत। आशा भोसले की आवाज़ है अंगूर। इस फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है। गुलजार के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं ये तराना।

इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों के ईमेल प्राप्त हुए हैं। हिसार से आप हैं राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग। धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन और इनके साथी। खमरिया से आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल और इनके साथी। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। तेलंगाना से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और इनके साथी। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार। श्रोताओं, इसी के साथ ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। 7:30 होने को हैं। आइए चलते हैं ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम सभा में।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनिया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के जय जोहार राम राम। आगे नाग पंचमी।

पंचमी भोजली बो के मगन है किसान, खेती किसानी जिनगानी भैया देवा जी ध्यान। आप जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला, हमार किसान भाई मन के तिहार, हम सब के तिहार नाग पंचमी के गाड़ा गाड़ा बधाई देते हैं आप मन झुकाओ। किसान भाई बहनी हो, खेती के बूता भाई भद्रा है, जेती तेती देखो आपन देखो तो खार खार में लोग मन के बोली है गूंजत है, फिर गजब महत्तम है जी हमारे तिहार बार मन के है ना भाई। नांग देवता के बेहनल हम पूजा पाठ करें और सावन के तीसरा सोमवार मंदिर के घंटी घलो अभिले सुनावत है भाई, लोगन मन मगन भगवान शिव शंकर के पूजल करत है। फिर किसानी के बूता के बात करबो तो हमार कतको जी किसान भाई मन राहेर तिली राम तिल साग भाजी के खेती करत है, और हम तो यही कहबो कि चाहे कोनो आप खेती करा अपन जैविक हमन खेती करबो और माटी के स्वास्थ्य और माटी के तासीर ला ध्यान दे के हमन अगर खेती करत हन तो बढ़िया होई। फिर आंखी मूंद के रासायनिक दवाई ला आप मन अंधाधुंध मन डरा भाई, कीटनाशक के छिड़काव मत करो, पर्यावरण के संगे संग हमर धरती दाई के स्वास्थ्य घलो में ओकर प्रभाव पड़ते, तेकर सेति हमन कथन के आप मन गोबर खातु है, वर्मी कंपोस्ट है ना, घन अमृत है बीजामृत है, एकर उपयोग करा। स्वस्थ धरा और खेत हरा के बात ला उठिया के भाई आप मन धरती माता ला स्वस्थ बनाए बर, मृदा ला स्वस्थ बनाए बर, पर्यावरण ला स्वस्थ बनाए बर ध्यान देवा। और आप मन ध्यान नहीं दिया किसान भाई बहन हो तो कौन ध्यान दी, आप मन तो भूया के भगवान ना भाई, आप मन धरती माता ला सुधारे माँ पूरा पूरा सहयोग कर सकत हो। जैसे कि हम आप मन कर गुठियान के भाई आज नाग पंचमी है तो शंकर भगवान के भजन आप ला सुनाबो, भोला शंकर ला मनाबो, भोला शंकर ला मनाबो, खेती खार ला संवार बो, साध राम मरावी और संगवारी मन के स्वर मा ये भजन ला आप मन ला सुनाबो सुनाओ।

0: तो बने लागिच ना किसान भाई बहनी हो, ये भाव भरे गीत ल सुनावत रहिसे साध राम मरावी ओंकर संगवारी मन। अब ये संदेश ला सुनथन।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: आज हमारे घर की शान और सबकी जान समर्थ का जन्मदिन है। समर्थ, तुम्हारे होने से हमारे परिवार में हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाता है। मम्मी रेवा कुलश्रेष्ठ, पापा सुधांशु कुलश्रेष्ठ और बहन सानवी कुलश्रेष्ठ एवं समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार की तरफ से तुम्हें ढेरों दुआएं और प्यार। तुम जो भी सपना देखो वो सब सच हो। हैप्पी बर्थडे समर्थ।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: आज हमारे घर की शान और सबकी जान समर्थ का जन्मदिन है। समर्थ, तुम्हारे होने से हमारे परिवार में हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाता है। मम्मी रेवा कुलश्रेष्ठ, पापा सुधांशु कुलश्रेष्ठ और बहन सानवी कुलश्रेष्ठ एवं समस्त कुलश्रेष्ठ परिवार की तरफ से तुम्हें ढेरों दुआएं और प्यार। तुम जो भी सपना देखो वो सब सच हो। हैप्पी बर्थडे समर्थ।
0: ग्राम सभा कार्यक्रम में मैं राजू भैया जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत करता हूँ। संगवारी हो, पाछो हफ्ता हमारे स्टूडियो में आ रही से श्रीमती निशा चंदेल जी मन जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है, उनकर तो हमारे बढ़िया बातचीत हो रही से पौध उत्पादन वितरण और पौध रोपण के संबंध में। आवा पहला आप सुनो, आथन सुनो। किसान भाई बहनी हो, यही मौका है कि हमन आने बाने के फलदार पौधा, सामाजिक वान के पौधा, जड़ी बूटी के पौधा, अन्य जैन प्रकार के हमन पौधा हमला मिलत है, वो पौधा ला अपन बारी है, कोला है, तालाब के मेड़ है, खेत के मेड़ है, परिया है, एमरुद्दीन मोरी सारा समझी हा। आज हम अपन ला बहुत बढ़िया जानकारी सुनवाबो, विषय है पौध उत्पादन वितरण और पौध रोपण के जानकारी। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे स्टूडियो में है श्रीमती निशा चंदेल जी जो मन है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, आप शासकीय उद्यान मस्तूरी में पदस्थ हो। बहन जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, जय जोहार, राम राम।
8: राम राम राजू भैया।
0: ये बता देवा जहाँ तक बात करबो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाले के पूरा जगत में विख्यात थे, पौधा के बात करबो हमन फलदार पौधा के बात करी के सामाजिक वन की पौधा के बात करी, आपके उद्यान विभाग के द्वारा वितरण के का कैसन व्यवस्था करे गए हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई बहनी मतलब विस्तार ले बताओ आप।
8: सबले पहले मैं किसान भाई मतलब बताना चाहता हूँ कि हमारे उद्यान विभाग में हमन पौधा वितरण के मतलब पौधा उत्पादन भी करथन, एकर साथ साथ जब बरसात के समय आते तो हमन पौधा ला निःशुल्क में वितरण भी करथन। एकर अलावा जिन किसान भाई मन नकदी में अच्छा वेरायटी के पौधा चाहत हो तो मल्ला नगद में भी हमारे विभाग से पौधा देहे के प्रावधान है। एकर अलावा हमारे यहाँ पौधा भर पे अनेक प्रकार के योजना संचालित है जिम किसान मन के हमन कागज बी व नक्शा खसरा लेके ओ मल्ला का कहते निःशुल्क में पौधा देते हैं। तो हमारे विभाग में मुख्य रूप से हमन दो तरीके से पौधा उत्पादन करते हैं, एक हमला मनरेगा से हमला पौधा उत्पादन करे के लक्ष्य मिले रही थे और एक होते विभागीय योजना में। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा मनरेगा में कैसे कैसे हमन करथन ओकर बारे में बताऊँ। तो मनरेगा में हमन मुख्य रूप से फलदार पौधा और वानिकी पौधा है, दो पौधे दो दो तरीके के पौधे।

0: के उत्पादन करथन।
1: जी
0: तो जेम फलदार में हमन ला आम हो गए, अमरूद हो गए, कटहल हो गए, जामुन हो गए, सीताफल हो गए, ये पौधा का उत्पादन करे के लक्ष्य मिले है। एखर अलावा जैसे अगर वानकी पौधा जिन छाया देते तेमा हमन ला नीम हो गए, गुलमोहर हो गए, अरकेसिया हो गए, करंज हो गए, खमार हो गए, ये पौधा के उत्पादन के लक्ष्य मिले रही से। जेमा मनरेगा के तहत हमन ला लगभग 30,000 पौधा के उत्पादन करे के लक्ष्य मिले रही से। तो जे ये लगभग 2025-26 में हमन ला लक्ष्य मिले रही से, जेन पौधा के वितरण ला हमन ला 2026-27 में करना रही से। तेमा विभाग के द्वारा हमन 20,000 पौधा के उत्पादन ए वर्ष में करे हवन और जिन बच गए 10,000 देखा हमन अगले साल मतलब उत्पादित करके ओला वितरित करबो।
1: अच्छा,
0: अच्छा। तो हमन सबसे पहली हमन ला 2025-26 में का लक्ष्य मिलिस तो ओकर हमन तैयारी कैसे कैसे करे हन तेला मैं आप मन ला बताना चाहत हूँ। तो एखर ले तो सबसे पहली हमन ला बीज है जेन हमन ला हमर जो जिला ऑफिस है वह वहां से हमन ला प्राप्त हो रही से वह। तो एखर

0: 2025-26 में का लक्ष्य मिलिस तो ओकर हमन तैयारी कैसे कैसे करे हन तेला मैं आप मन ला बताना चाहत हूँ। तो एकर ले तो सबसे पहली हमन ला बीज है जेन हमन ला हमर जो जिला ऑफिस है वहाँ से हमन ला प्राप्त हो रही से वे। तो एकर ले सबसे पहली बीज है तो हमन ला मिट्टी गोबर खाद और रेती के जरूरत पड़ते। तो एकर ले हमन नर्सरी मन का करें कि हमन ओका थैली भरे के प्रोसेस ला पहली शुरू करे हन। तो जब मैं थैली भरना रही थे तो सबसे पहली थैली भरे बार हमन ला मिट्टी गोबर खाद और रेती की आवश्यकता पड़ते। तो ओमा हमन दो भाग मिट्टी उपयोग करे हन, एक भाग गोबर खाद और एक भाग रेती ला मिला करके हमन ओला जो 6x8 के पॉलीथीन आते तेमा भर के रखे हन।
1: बहन जी जेन पौधा रोपण के बाद चलत है हमर किसान भाई मन ला कतेक उम्र के पौधा ला आप मन उपलब्ध करा था?
0: जैसे हमन अब यह का मनरेगा वाला है तो ऐसे रही थे कि अब पिछले साल हमारा लक्ष्य मिली तो आई साल बांटना रही थे तो लगभग ओखर हाइट है 1 फीट 1.5 फीट तक जाते,
1: मतलब 6 महीना पौधा,
0: 6 महीना के पौधा हमन कही सकते हैं। लेकिन अगर जैसे विभागीय योजना में हमन ला देना रही थे तो ओमा हमन 2-3 साल के पौधा ला वितरित करते हैं जेना कम से कम 3 फीट 4 फीट के हाइट के पौधा हो जा रही थे ते मन ला हमन विभागीय योजना में देते हैं।
1: आप मन के उद्यान विभाग निश्चित रूप ले रोजगार के रद्दा उपलब्ध कराते हैं हमारे किसान भाई मन पर। आमा नींबू चीकू संतरा पपीता अगर लगाना चाहिए तो काय पौधा आपके विभाग के माध्यम ले उपलब्ध होते बहन जी?
0: हमारे यहाँ से सब कहा सब तरीके के पौधा हमें मिल जाते हैं। अगर तुम बीजू कही है तो बीजू जैसे कि ग्राफ्टिंग वाला जिन कही थे कलमी वाला तेनो पौधा हमारे विभाग के द्वारा हमन उपलब्ध करा देते हैं।
1: जी जी जी जी तो ये बता देवा अगर व्यवसायिक ढंग
0: तो कुछ भी जैसे पिछला साल हमन कोई भी फसल ले रही थन तेकर कीड़ा बीमारी रही थे तेना का होते कि गर्मी के सूर्य के प्रकाश पड़ते तो खत्म हो जाते। तो या एकर अलावा जैसे जोताई करें ओकर बाद हमन देखें कि ओमा कुछ कीड़ा बीमारी लगे है तो ओखरो हमन ओका उपचारित कर सकत हन। जैसे कि वो जमीन है तेला हमन फार्मेलिन के घोल से उपचारित कर सकत हन या फिर कोई फंजीसाइड वगैरह डाल के हमन रख सक डाल के छिड़काव कर सकत हन। जैसे फार्मेलिन से करसन तो 2% अगर हमन फार्मेलिन ला पानी में घोल करके 15 लीटर पानी में घोल देना चाहिए ओकर बाद स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे करे के बाद ओला हमन पॉलीथीन से ढक देना चाहिए।
1: अच्छा बहन जी ये जानना चाहो जिसे पौध उत्पादन वितरण और रोपण के जानकारी दे बार आप मना है आप ले हम विशेष जानकारी ये जानना चाहतन जैन किसान भाई मन वर्षा के बाद पानी के रेखे के बाद सावन तो महीना शुरू चलत है कि दवा तो रोप चुके हैं पौधा उमन ला विशेष करके का बात के ध्यान दे के जरूरत है जिसे अभी चर्चा चलाते रहा अपन कीड़ा मकोड़ा के तो का बात के ध्यान रखा विस्तार ले बताओ।
0: जैसे तो मैं पहली बताया कि गर्मी में उमन ला गड्ढा खोद के रखना चाहिए। जैसे अभी बरसात में गड्ढा खोद दिया तो उमा का रही कि बहुत सारा परेशानी आती थी गड्ढा फंजीसाइड फंगस लग जाते बैक्टीरिया कुछ भी के भी परेशानी आती रही थी। तो मैं किसान भाई मन ला कही तो उमन गड्ढा ला तो गर्मी समय खोद देवे ओखर बाद जैसे पहली बारिश होते या फिर जैसे ज्यादा गैप हो गई तो थोकन बारिश होगी तो वहाँ पौधा ला रोपण करना चाहिए। तो पौधा ला रोपित करे थे तो ऐसे नहीं है कि पूरा ओकर पत्ती जहाँ तक निकले वहां तक रोपित करे थे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओकर आधा जो डंगाली रही थी मतलब पत्ती के नीचे से आधा भाग में ओला लगाना चाहिए। एकर अलावा ओमला थाला बना के पौधा के रोपाई करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पौधा लगावा थे और पूरा मोटा भर लेगा कही थे मिट्टी ला भर देवा थे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पौधा ला लगावा था ओखर बाद ओखर का कहते किनारे किनारे से जैसे थाला बनाते 5 सेंटीमीटर जैसे पौधा है जैसे आमा है तो 10 सेंटीमीटर तक के ऐसे का कहते मतलब घेरा बना के पौधा लगाना चाहिए। और कभी भी
1: अच्छा निशा चंदेल बहनी ये बता देवा लगभग लगभग हमला ऐसे लगते घूमथन था हमारे छत्तीसगढ़ में नींबू और गेजिन बगीचा है वो कम हो जाते हैं ना भाई तो पौधारोपण करे बार हमारे किसान भाई मतलब खास करके नींबू वर्गी का सलाह देना चाहता।
0: सबसे पहले बताओ कि नींबू है इतना अच्छा फसल है कि ओला ना ज्यादा पानी लगे
1: हमें
0: ज्यादा कीड़ा बीमारी भी नहीं आवा। एकर अलावा हमारे यहाँ सब कही थे इसी एरिया में कि बंदरा खाते लेकिन नींबू ऐसे फसल है जिला बंदर भी ना बंदरा खावे नहीं कर गरुआ तक नहीं खावे। तो सबसे अच्छा ये है कि
1: बाजार में सबसे ज्यादा
0: रेट रही थे। तो ऐसे नहीं है कि बहुत किसान मन जैसे अपन हमारे मजदूरी कति बताता हूँ उत्ती बार मानिक चौरी वहाँ 4-5 किसान ऐसे है जिन में 2-3 हेक्टेयर में मतलब नींबू के खेती करते हैं। तब मैं किसान भाई मन ला कहा था कि अगर उमन ला देखना है तो हमारे मानिक चौरी में 2 किसान है वह तिखर बारी ले जाके देखे उमन कैसे तरीके से खेती करे थे वह इमा से तुम ला बहुत फायदा हो।
1: मतलब हमें कह सकते हैं कि नींबू वर्गी पौधा गलो के व्यवसायिक खेती करे जा सकते
0: बढ़िया
1: के भाग के सब ले
0: हाँ हमारे विभाग से हमारे नींबू के पौधा भी देथन, अगर कोई किसान अपन खुद से लगावत है तो ओला सब्सिडी भी देथन।
1: अच्छा ये बता दो अभी

0: जिसे पौधरोपण के बाद चला थे बहन जी, एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा ले भरपूर अने दर्मी है ना भाई। ये कर खेती अगर किसान भाई मन करना चाहे तो कर सकते थे का
1: कर
0: अनार के
1: सकत
0: खेती?
1: हेवे। अनार के खेती तो अच्छा हेवे,
0: जी
1: हमारे यहाँ के जो वातावरण हेवे
0: हाँ
1: वो है एकर अनुकूल भी, काबर
0: जी
1: की अनार है तो ओखर छिलका तक हमारे जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाते,
0: हाँ
1: कई तरीके से दवाई के रूप में मिलते,
0: पूरा पंचांग ओखर काम
1: पंचांग
0: आते
1: काम आते पूरा,
0: जी
1: मतलब ओखर फल से लगा के ओखर छिलका तक हम यूज करते हैं। तो हमारे
0: हाँ
1: विभाग में हमन नर्सरी में अनार के पौधा भी उत्पादित करते हैं।
0: अच्छा, अभी आप मन
1: तेना
0: मनरेगा के तरह अपन पौधा उपलब्ध कराते हैं इसे कि बताते रहते हैं, सामाजिक वानिकी पौधा को शामिल कर रहा था।
1: हाँ, उमा अमन वानिकी पौधा जैसे कि गुलमोहर हो गए, जैसे
0: जी
1: अरकेसिया हो गए,
0: जी जी
1: नीम हो गए, जैसे कि खमार हो गए, जिन तुम्हारी इमारती लकड़ी भी देते
0: जी
1: तुम्हन खेत के मेड़ में भी लगा सकत हवा, तो ये सब पौधा भी हमन उमा देथन।
0: जी
1: वो कभी कभी कुछ बीमारी भी हो सकत है वायरस के, या
0: जी
1: तो फिर उमा मैग्नीशियम के कमी भी हो सकत है, जेखर वजह से का कहते मैग्नीशियम आयरन के कमी के वजह से भी पत्ती पीला पड़े लग जाते। मतलब हमारे यहाँ के देखा जनरली मिट्टी में हम देखते हैं कि बोरान के कमी है,
0: जी जी
1: जिंक के कमी है। तो मैं किसान भाई मतलब कहता हूँ कि कोई भी फसल लगाए से पहली,
0: जी
1: चाहे वो धान लगावे, चाहे सब्जी लगावे, चाहे वो फलदार लगावे,
0: सामाजिक उद्यान की
1: हाँ
0: पौधा लगावे।
1: लगावे, कुछ भी लगावे, तो वो पहले अपन मिट्टी ले थोड़ा सा वो गई थे उखर परीक्षण करवा लेवे कि ओमा नाइट्रोजन कमी थोड़े नहीं या कोई भी चीज के।
0: बहन जी पौधरोपण के बारे में बढ़िया जानकारी आप दे था, लेकिन जिसे भी हम लगाते हैं पौधा तुरते फल तो नहीं दे, हमारे किसान भाई मतलब तुरंत आमदनी की जरूरत है, तो आप ले जानना चाहते हैं जिसे आमा नींबू चीकू संतरा सामाजिक वानिकी पौधा की जानकारी बहुत सुंदर सुंदर ढंग ले आपने देता। बीच में अगर अंतरवर्ती फसल लेना चाहते तो फूल की खेती हमारे किसान भाई कर सकते का?
1: आराम से कर सकते, जैसे हमारे जो फलदार पौधा होते ते
0: जी
1: मल्ला तो हमें 2 मीटर में नहीं लगन, हमार किसान भाई मल्ला लगते कि हमारा कितना जल्दी से जल्दी
0: पैसा मिल
1: आय हो सकते, ते
0: जाएगा।
1: खाले ओमन का करते कि
0: हाँ
1: ओमन दूरिया दूरिया में लगाते,
0: जी जी
1: जैसे
0: जी
1: नींबू ला 6-6 मीटर लगावा, ओखर बीच में खाली जगह बच गए, ओमन तुमन सब्जी लगा सकत है, या फिर तुम्हारे जैसे गेंदा, गेंदा के हमारे यहाँ साल भर डिमांड रही
0: जी
1: थे,
0: जी
1: कतका 100-100 रुपए 80 रुपए किलो तक जाते
0: आठों काल 12 महीना
1: बात
0: फूलते।
1: आओ 8 काल, आजकल जैसे कलकतिया वेराइटी रही थे
0: हाँ
1: तेन
0: हाँ हाँ
1: तेना फूल थे ला
0: जी जी
1: अमरिया, तो वो हमारे यहाँ गेंदा तक के भी मतलब हमारे यहाँ विभाग से हम देवत हन,
0: जी जी
1: ये दारी हमारे मस्तूरी ब्लॉक ला गेंदा के भी मतलब लक्ष्य मिले हुए,
0: हाँ
1: जेमा गेंदा के कटिंग किसान मल्ला मिल जाए, वो मना के हमारे यहाँ से गेंदा कटिंग भी लगा सकते थे, पौधा के बीच में गेंदा लगा ले वे जेना का कहते 2 महीना 3 महीना के बाद, तो अच्छा से 2 महीना के बाद तो आए लग जाते वो फूल, वो खुद से गेंदा के कटिंग, ऐसे नहीं कि एक पीत लगा दे हैं तो वो मर जाए, ओकर खुद से वो कटिंग तैयार कर लेवे
0: माने
1: और
0: जुन्ना
1: ओकर
0: पौधा ले हमन नया पौधा बना
1: नया पौधा
0: सकता
1: बना सकत हवा, ऐसे
0: है।
1: नहीं है कि पहली कार दृश्य से कि ओकर जो पंखुड़ी रही थे तेखर से लगावे, तो एक
0: जी
1: बार फूले ओकर ले फिर वो खत्म हो जाते रही,
0: हाँ हाँ
1: अब
0: हाँ
1: का है मन कटिंग से कटिंग, जैसे एक
0: जी
1: पौधा
0: जी
1: लगी थोकन बड़े हो गई सो 10-15 सेंटीमीटर के, ऐसे तो जड़ पकड़ ली तो
0: मतलब
1: फिर हमन ओकर कटिंग काट के
0: गोंदा
1: फिर से लगा
0: के
1: सकते
0: पेड़ एक उमले अनेक छोटे छोटे पौधा बनाइन अनेक इसे
1: अनेक
0: कर
1: ऐसे कह
0: सकत।
1: सकते हैं। वैसे नहीं हमारे यहाँ ग्लैडियोलस भी है, जैसे
0: जी
1: बल्ब कहते हैं कि एक कांदा ले एक साल में एक एक फूल आते,
0: हाँ
1: लेकिन ऐसे नहीं है, वो अगर वह एक साल दे दिस तो कांदा ला झन निकाला, वो
0: हाँ
1: अगले साल फिर
0: जी
1: से वैसे वो दे सकते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: लगातार छत्तीसगढ़ के हमने बात करता निशा चंदेल बहनी, तो ये बतावा का हमन ये जन आपके उद्यान की पौधा है आमा नींबू चीकू संतरा जैसे गेंदा फूल के हम खेती करते हैं, तो इला हमन जैविक ढंग ले कर सकते हैं का?
1: आराम से हमन जैविक तरीके से कर सकत हन, हमारे यहाँ
0: जी
1: बहुत सारे किसान भाई मन है जिमन जैविक तरीके से खाली वर्मी खाद हो गए, नीम खली हो गए, बोन मील हो गए, जैसे कि कई जना मुर्गी फार्म करते
0: हाँ
1: ओखर जो भी अवशेष निकलते ते वो
0: जी
1: सबसे बढ़िया अच्छा हमारे खाद के साधन है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: अपने घर के खाद ला तुमन अपने खेत में यूज कर सकत है, तो
0: सिर्तम
1: जैविक में
0: कथा।
1: जा कवर के जितके रसायन हमारे शरीर में जावत है वह हमारे शरीर ला उतके हानि पहुंचावत है, तो किसान भाई मन चाहे तो अपने घर में जैसे कि गोबर गैया रखे तो
0: जी
1: बढ़िया गोबर खाद बनावे, या एकर अलावा कोनो कति ले केचुआ ले आवे,
0: हाँ
1: वहां से अपन खुद से खाद तैयार
0: वर्मी
1: करके खुद
0: कंपोस्ट है,
1: बने
0: बीजामृत है, जीवामृत
1: अमृत
0: है,
1: है
0: मतलब
1: सब
0: बना
1: बना
0: सकते घन
1: सकत
0: अमृत
1: था।
0: बना सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: जैसे एजोला वगैरह थोकन
0: हाँ
1: आधा किलो एजोला लगावा, ओखर बाद वो इतना कन का कहते वह ग्रो कर डालते कि
0: जी
1: हमारा आने रसायन की जरूरत पड़वे नहीं
0: अच्छा,
1: करे।
0: पौध उत्पादन वितरण और पौधरोपण के जानकारी के बाद है जब चल गए बहन जी, तो किसान भाई मन जब उनका फायदा हो ही तबे करही निश्चित रूप ले भाई, तो ये बतावा इला हमन रोजगार के दृष्टिकोण से करना चाहथन तो का यह संभव है?
1: रोजगार के दृष्टि से बढ़िया है वह है, देखा जैसे तुमन फल लगाया नींबू के लगाया थे, अगर अच्छा किस्म लगाया था तो वह 2 साल बाद तो फल दे लग जाते,
0: जी
1: अभी तुमन मार्केट में देखता कि 20 रुपए के 2 ठी 3 ठी बीच में सीजन में ऐसे हो जाते, तो वो तो तुमन 2 साल बाद दिए, ओखर बीच में अंतरवर्ती लगाए, अंतरवर्ती फसल है तो तुमन लगा

0: गई थे, कतका गला देते थे, कोई भी सब्जी लगा था 3 महीना के रही थे, तीन तीन महीना में तुमन साल भर में 3 घले डालिया, तो जब तक ओखर 2 साल में अगर वो फल देवत है तो 3 साल में तुमन ला सब्जी के कतका लाभ मिल सकत है। जैसे कि तुमन टमाटर लगाया ओखर बीच में, तो टमाटर जैसे कि अभी बरसात के टाइम में अभी देखिए अगर ओला तुमन अच्छा से भाटे लगावा, टमाटर तो चलो पानी में ज्यादा खराब हो जाते लेकिन भाटा लोग फर्क नहीं पड़े पानी से, तुमन साल में अगर 3 महीना में तुमन लो 1 लाख तक के 1 एकड़ में लगा तो फायदा दे दी, और वहाँ ज्यादा परेशानी ज्यादा कीड़ा बीमारी उतका नहीं लगे। तो ऐसे नहीं है कि तुम्हारे जमीन के भी पूरा उपयोग हो जाते, फिर 2 साल बाद तुम्हारे अगर नींबू मिला थे तो नींबू के साथ साथ सब्जी तो तुम्हारा देवेज कर ही डीएपी डाल देना चाहिए। तो मैं कहा तो किसान भाई मल्ला कि अगर उमला लगत है तो अगर जमीन में तो जिंक सल्फेट हो गए एकर भी थोड़ा थोड़ा मल्ला उमर दे देना चाहिए। एकर अलावा कि पौधा बढ़वा रहे तो ग्रोथ हार्मोन जैसे प्लानोफिक्स आते ये सब के भी उमला छिड़काव करना चाहिए।
1: चला बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया आप मान श्रीमती निशा चंदेल जी, आप रहे हो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शासकीय उद्यान मस्तूरी जिला बिलासपुर में। आज हमारे स्टूडियो में आके पौधा उत्पादन वितरण और पौधरोपण के जानकारी ए विषय में विस्तार हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई बहनी मन ला आप मन जानकारी देहा एतिकन समय दे आप मन हमारा आकाशवाणी ला तेखर सेती आप लगेबो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम।
0: राम राम राजू भैया।
1: वाह भाई कतका सुघर जानकारी देवत से श्रीमती निशा चंदेल जी मन जो मन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मस्तूरी विद्यान में पदस्थ है जिला बिलासपुर में, पौध उत्पादन वितरण और पौध रोपण के जानकारी हमर सो होए भेंट पाऊमन बहुत बढ़िया दी। संगवारी हो आप ला मंडी और मौसम ढले चलथन, मिले जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, गरज और चमक के संग कहूँ कहूँ जगह बारिश होए के संभावना है। मंडी बिलासपुर तिफरा सब्जी मंडी के भाव हमारे हाथ में है, पताल के भाव 1800 रुपये क्विंटल, गोंदली 1500 रुपये क्विंटल, हरियर मिर्चा 1800 रुपया, पालक 2100 रुपया, केरा के भाव 2300 रुपया, पपीता 2700 रुपये क्विंटल, मुरई 4000 रुपये क्विंटल और शकरकंद 3500 रुपये क्विंटल, कोहड़ा 1200 रुपये क्विंटल, धनिया पत्ती हरियर के भाव 5000 रुपये क्विंटल और रमकेरिया के भाव 1700 रुपये क्विंटल। मुंगेली मंडी में धान सामान्य के भाव 2381 रुपया क्विंटल, गेहूं के भाव हमारे हाथ में है 2580 रुपया, राहर दार के भाव 7580 रुपये क्विंटल। सामिक सलाह में हम अपन किसान भाई मन ये कहना चाहथन कि खेत में ज्यादा पानी हो तो संगवारी हो ओला आप मन निकाल दो, ज्यादा पानी भरा हो की स्थिति में जल जल बीमारी से बंकी हो के खतरा हमारे धान के फसल में हो सकत है, तेकर स्थिति आप मन पानी निकालो और ऐसे उदिम करा कि वो पानी जिन निकाला था तेन छोटे छोटे डबरी में जावा, तालाब में जावा, बोहा के नदी में जाए अने पानी बचत धर खलो हमला ध्यान दे बरे। पशु मन ला मौसमी बीमारी बचाए बर टीकाकरण हमला अपनाना है और संगे संग हमला कुठल बढ़िया साफ साफ रखना है। तालाब में मछली पालन के उद्यम हमारे किसान भाई मन कर सकते है, रोह कतला कामन कार पर मिलकर मिश्रित मछली पालन के अगर पालन करते तो बढ़िया हो, फलदार पौधा के रोपाई हमारे किसान भाई मन कर सकते। अब आप मन ला सुनाओ भाई एक बढ़िया गीत जिला स्वर देवत है राधेश्याम पटेल सुमन पवार और संगवारी मन आवाज सुनाथन।

टोला मैं ले जाऊं सनिचरी बजार भाव भरे गीत सुनावा से राधे श्याम पटेल सुमन पवार अंकल संगवारी मन जात जात पता बता दिन आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्र लिख के खचित बताओ। हमार पता है ग्राम सभा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 49 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर पिन नंबर है 495006। आज के ग्राम सभा कार्यक्रम ले राजू भैया ला दो विदा जय जोहार राम राम।

अभी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। आज कलाकार हैं सपना अवस्थी।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज आप सुन रहे हैं सपना अवस्थी को।

इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, सावन का महीना हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ होता है। हरेली त्यौहार के साथ शुरू हो जाता है तीज त्यौहारों का सिलसिला। हरियाली तीज और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन भी इसी माह मनाया जाएगा। आज हम सभी नाग पंचमी का पर्व मना रहे हैं। श्रोताओं, ये दिन सिर्फ सांपों को पूजने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि हमारी धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही बेजुबान जीव जंतुओं का भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में सांपों को भगवान शिव का आभूषण और भगवान विष्णु की शैया बताया है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने कितने गहरे विज्ञान और दर्शन के साथ प्रकृति के हर जीव को भगवान के साथ जोड़ा है, ताकि हम सभी उसका सम्मान करें, उन सभी की रक्षा करें। आइए आज इस पावन पर्व पर कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो इस पर्व से जुड़ा हुआ है।

0: जय हिंद मित्रों, आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के द्वारा आम जनों में नई चेतना की क्रांति आई है। संदेशों के आदान प्रदान या पैसों के लेन देन से लेकर लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत गति से तेजी आ चुकी है, किंतु विडंबना इस बात की है कि विज्ञान के इस बढ़ते चरण के बीच साइबर अपराध जैसी समस्या भी जन्म ले चुकी है। तनिक मात्र चूक या हमारी अज्ञानता के कारण हम में से तमाम लोग अपने जीवन भर की पसीने की कमाई क्षण मात्र में साइबर अपराधियों के कुचक्र में उलझकर गंवा रहे हैं। इस विकराल समस्या को समूल उखाड़ फेंकने अर्थात साइबर क्राइम मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा साइबर जागृति अभियान स्वतंत्रता दिवस 2026 से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से शहर से लेकर सुदूर ग्रामों में बसे अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। सजगता से ही ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है। कभी भी किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और ऐसी समस्या के आते ही 1930 में कॉल करें। बिलासपुर पुलिस भी इस अभियान को बहुत व्यापक रूप से चला रही है। बहुउद्देशीय अभियान चेतना की टीमों के द्वारा जिले के प्रत्येक नागरिकों को इस संबंध में जागरूक कराना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में जीव जंतुओं की खास भूमिका होती है। अक्सर हम सांपों को देखकर डर जाते हैं या उन्हें अपना दुश्मन मान बैठते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सांप किसानों के मित्र होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और कीड़ों को मारकर सांप हमारी खाद्य सुरक्षा में चुपचाप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वे हमारे खेतों के रक्षक होते हैं।

श्रोता मित्रों, अंधविश्वास और डर के कारण आज कई बेजुबान जीवों की कई प्रजातियां खतरे में हैं। जीवों के प्राकृतिक आवास जंगलों के नष्ट होने से हमारा पर्यावरण संकट में है। प्रकृति का हर एक जीव, चाहे वो आसमान में उड़ता हुआ परिंदा हो या जमीन पर रेंगता हुआ जीव, इस सृष्टि की खुशबू को बनाए रखता है। अगर इस चक्र से एक भी धागा टूटा तो ये खूबसूरत जीवन संगीत अधूरा रह जाएगा।

श्रोताओं, ये धरा खूबसूरत तभी तक है जब तक इस पर हर पंख को उड़ने की आज़ादी और हर पांव को चलने के लिए ज़मीं हो। आइए इन बेजुबान जीवों की आवाज़ बने, क्योंकि इनकी सुरक्षा में ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित है।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आइए हम सभी ये संकल्प लें कि अपने आसपास सफाई और हरियाली बनाए रखेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण मिले। उम्मीद है रजनीगंधा का आज का ये सफ़र आप सभी श्रोताओं को पसंद आया होगा। रजनीगंधा के फूलों की तरह आप सभी का जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे, इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा का ये अंक अब यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। समय उसके बाद उर्दू में।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाक

0: घरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी

0: और बिप्लब कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंदुझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership

0: जाए।
1: श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और शारदा की आवाजों में। शैलेंद्र हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम अराउंड द वर्ल्ड

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोले क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: खाक के बाहर।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: मतलब सेल्यूलाइट का धमाल।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता, ओ काले कुर्ते

आंखें वो फिल्म थी जिसकी सफलता के साथ डेविड धवन ने एक फिल्मकार के रूप में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर एक निर्देशक स्वर्ग, शोला और शबनम, साजन चले ससुराल, जुड़वा, जुड़वा दो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों से डेविड धवन मनोरंजन की बहार लेकर आए।

1993 की एक्शन थ्रिलर आंखें और 1999 की कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन ने इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए नामांकन दिलवाया।

डेविड धवन का मूल नाम राजेंद्र धवन है। राजेंद्र धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनके पिता बैंक में थे तो उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया और वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई के पश्चात अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए डेविड धवन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई में एक्टिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। एफटीआईआई की बातें अभी बाकी है, आइए पहले आगे बढ़े बोल राजा बोल के इस गीत को साथ लेकर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और जूही चावला।

जी हम बात कर रहे हैं FTII की। यहाँ राजेंद्र धवन ने एडमिशन तो एक्टिंग के कोर्स में लिया था, पर कलाकार सतीश शाह और सुरेश ओबराय से वहाँ मिलकर, जो वहाँ के विद्यार्थी थे, इन्हें लगा कि एक्टिंग इनके बस की बात नहीं है, तो इन्होंने विकल्प के रूप में एडिटिंग को चुना और गोल्ड मेडल के साथ अपनी परीक्षा पास की। वैसे तो मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी आपके पसंदीदा निर्देशक थे, पर ऋत्विक घटक की बांग्ला फिल्म मेघा ढाका तारा देखकर आपने एक निर्देशक बनने का सोचा, और जो सोचा वही किया, और कमाल का किया।

डेविड धवन के नाम को लेकर बड़ा ही रोचक और आत्मीय संबंध है। अगरतला में इनके पड़ोसी कैथोलिक परिवार ने इन्हें डेविड कहकर पुकारा, इस तरह से उन्हें पुकारा करते थे, और यही नाम इन्होंने अपने पहले नाम राजेंद्र की जगह चुना और FTII में इसी नाम से दाखिल हुए। वैसे ये जानना भी कुछ श्रोताओं के लिए सुखद होगा कि डेविड के बड़े भाई हैं मशहूर अभिनेता अनिल धवन। छोटे छोटे शहरों से हम तो झोला उठा के चले, डेविड की जीवन यात्रा से जुड़ता हुआ ये गीत है। ये अलग बात है कि चेतना और पिया का घर फेम हीरो अनिल धवन, इनके बड़े भाई, फिल्मों में उस वक्त सक्रिय थे, पर फिल्मों में काम मिलना तब भी उतना आसान नहीं था। मुंबई पहुंचे डेविड ने आरंभिक दौर में बॉम्बे टीवी के न्यूज सेक्शन में एडिटिंग से शुरुआत की। पहला एडिटिंग का ब्रेक सावन कुमार और पहलाज निहलानी ने इन्हें दिया। फिर राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी, महेश भट्ट की नाम और सारांश जैसी फिल्मों के सफल संपादन से आपने अपना नाम किया। राजेश खन्ना और संजय दत्त डेविड धवन की संपादन कला के मुरीद थे। डेविड धवन भी मानते हैं कि संजय दत्त ही थे जिनके कारण इन्हें बतौर निर्देशक पहला पहला मौका मिला, और फिल्म थी शोला और

0: गोरी गोरी पाकी चोरी शर्मिली और नखरे वाली।
1: डेविड धवन का जिक्र हो और गोविंदा का नहीं, या फिर गोविंदा का जिक्र हो और डेविड धवन का नहीं, तो बात अधूरी लगती है। चलिए बात को पूरी कर लेते हैं। पहले कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने हिंदी फिल्म दर्शकों को अनेक हंसाती गुदगुदाती हास्य प्रधान फिल्में दी। 18 फिल्में इन्होंने साथ की। चलिए इनके साथ की गई फिल्मों के गीतों की एक मेडली सुन लेते हैं।

एक निर्देशक के लिए गोविंदा को फिल्म में लेना निश्चित रूप से सफलता का प्रतीक था। जहां तक डेविड धवन की बात है तो आपका मानना है कि गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो मामूली सीन को भी मनोरंजक बना देता है। और जहां तक गोविंदा के सेट पर देरी से पहुंचने की बात है तो निर्देशक का मानना है कि इससे फिल्म पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोविंदा एक तेज कलाकार है, 10 घंटे का काम 4 घंटे में बड़ी ही सफलता और कामयाबी के साथ कर लेते थे। डेविड धवन एक भावुक और आत्मीय इंसान है। 90 के दशक में जरूर काम की अधिकता ने इन्हें एक बैड टेंपर का बना दिया था, पर आज अपनी 41 फिल्मों के बाद इनका मानना है कि वे अब काफी कूल हैं। अपनी पत्नी करुणा चोपड़ा धवन को आप अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक इमोशनल एंकर मानते हैं, जिन्होंने इनके परिवार को सहेजा, दुलारा, प्रोत्साहित किया। डेविड धवन के दो बेटे हैं, एक रोहित और दूसरे वरुण धवन।

एक कलाकार और निर्देशक का ये बाप बेटे का प्यारा रिश्ता है जो फिल्मों में भी साथ साथ देखने को मिलता है। वरुण धवन को आप एक नटखट बालक के रूप में पाते हैं, पर फिल्म के सेट पर जब डेविड धवन होते हैं तो वरुण सिर्फ एक निर्देशक का कलाकार होता है।

मुस्कान की दौलत खूब लुटाई है। राजा बाबू, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हन हम ले जाएंगे, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, शादी नंबर वन जैसी खूब नंबर एक फिल्में बनाई है इन्होंने। दर्शकों ने भी इनकी फिल्मों पर प्यार लुटाया है।

0: तो ये था आज के फनकार, जो केंद्रित था निर्देशक डेविड धवन पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: पत्थर
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सभी सुनने वालों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई उसे बताए जाकर दिल धड़कता है उसके लिए, अब तक वो समझाता किस्सा हुआ तमाम, हम जीते हैं उसके सहारे अब तक, वो जो कहता था भूल जाओगे मुझे, दिल न माना उसके इशारे अब तक, रातों की तन्हाई गवाह है, आंखें ढूंढती हैं उसे तारों में अब तक, वक्त ने लाख समझाया दिल को मगर

उजाड़ लम्हों की दास्तानें जो तुम कहो तो सुनाएं तुमको। बहुत हम जागते हैं, आओ जरा सा जगाएं तुमको। ये तन्हा रात, ये दिल उदास और आंखें नम, अगर इजाजत हो तो ये हाले दिल भी सुनाएं तुमको। तुम्हें जो बताएं दास्तानें गम अपनी, तो क्या सुन सकोगे? दिल पे जो बीती कयामत, वो सब लफ्जों में बुन सकोगे? दिल खामोशी में ढाल के बैठा है दर्द सारा, मेरे दिल की सदा को सुन सकोगे? सुनो, इस इश्क ने कहीं का ना छोड़ा हमको, वीरान हुआ दिल का नगर सारा मेरे हमदम। हम जिसको समझ बैठे थे मोहब्बत, वो बन गया आखिर दिल का खसारा मेरे हमदम।

ऐसा ना होना हकीकते हाल है अब, दर्द की कुछ दवा नहीं बहरहाल अब। किसी की याद ने रखा है आबाद मुझको, किसी की याद ही है दिल पर वबाल अब। मैं अपने जख्म छुपाऊं किस करीने से, हर एक आंख में तेरा ही सवाल है अब। हवा के साथ उड़े ख्वाहिशों के पुर्जे, शहरे वफा में कितना मलाल है अब। सुना है उसको मेरे जिक्र से गुरेज नहीं, मगर ये बात भी महज ख्याल है अब।

इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो शबो रोज के सिलसिले अब नहीं रहे, हम जिंदा तो हैं मगर जिंदा नहीं रहे। जो ख्वाब मेरी आंखों में भरे थे तूने, वक्त की धूप में वो हरे नहीं रहे। वफा की राह में क्या कुछ नहीं लुटाया, फिर भी तेरे नसीब में हम नहीं रहे। हम अपने आप से भी बिछड़ते चले गए, आईनाए दिल में वो पहले से नहीं रहे। अब कौन इंतजार की शम्में जलाएगा, वो लौट के आने के वादे अब नहीं रहे।

आओगे लौट कर कभी, ये दिल को यकीन सा है, हर एक ख्वाब में तेरा निशान सा है। हवा के दोष पे आती है खुशबू, लगे यूं जैसे करीब तेरा मका है। मैं जागती हूँ रात भर तेरी याद की हरारत में, मेरे वजूद में एक दर्द जाविदा सा है। अगरचे दूर हो तुम, फिर भी दिल गवाही दे रहा है कि इस हिजर के पीछे विसाल का जहां सा है। ना पूछ हाले दिल बेकरार ऐ हमदम, तेरी जुदाई में हर लम्हा इम्तिहान सा है।

तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी अब शायद चले जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो है मेरा मुझको दे दे। एक दूसरे का वक्त हमें लौटाना चाहिए। और ना झेलेगा अब आंधियां तूफान, रेत का ये मकान ढह जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला, अब हमको जुदा हो जाना चाहिए। ये तय है कि अब ना मिलेंगे हम कभी, एक आखिरी बार अब गले लग जाना चाहिए।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री

जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हिमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।